FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 28वीं तिथि तदनुसार 18 जून 2026। इस समय सवेरे के 8:56 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ केंद्र का ये मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगा हर्ज़ पर। अब प्रस्तुत है आज का शुभ विचार। फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसको सही साबित करना काबिलियत है। ये विचार हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के।
1: साफ हो गुलशन, महका हो गुलशन, चहका हो गुलशन, चलो गुलशन को गुलशन बनाएं। प्लास्टिक को कहें ना, थैले को कहें हाँ।
0: श्रोता, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से, एफएम बैंड 102.9 मेगा हर्ज पर। इस समय सवेरे के 9 बजने को हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। आइए प्रतीक्षा करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी। आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें होर्मूज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ट्रंप ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान व्यक्तिगत रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। श्री मोदी कल रात राजधानी पेरिस पहुंचे। उनके आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। श्री मोदी ने डीप फेक, साइबर धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की हैं, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित ये मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट प्रतीक है। साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत देश

0: अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 प्रणाली का आधुनिकीकरण करने और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी में नागरिकों को तुरंत सहायता मिले। उन्होंने कल नई दिल्ली में हेल्पलाइन 1930 के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कॉल सेंटरों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि शिकायत निवारण व्यवस्था से अब तक लगभग 1,00,000 नागरिक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही गृह मंत्री ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर की साइबर पुलिस ने जिला कलेक्टर की एसएसओ आईडी से छेड़छाड़ करने वाले एक शातिर साइबर ठग को झालावाड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल तवर ने कलेक्टर की आईडी में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर फर्जी दस्तावेज अपलोड किए थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि आरोपी का मुख्य उद्देश्य पीएम किसान, जन आधार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सरकारी योजना के लाभार्थियों के खातों की जगह बैंक में अपना खाता जोड़कर सहायता राशि हड़पना था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका स्वागत है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह फैसला लिया है। इसके लिए विभिन्न विभागीय सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। हालांकि जिन कर्मचारियों ने वर्ष 2024-25 और 2025-26 में इस छूट का लाभ पहले ही ले लिया है, उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के नए पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने विभागीय जांच के 19 लंबित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कई कार्मिकों की वेतन बढ़ोतरी और पेंशन रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के 4 सेवारत अधिकारियों पर आरोप प्रमाणित होने पर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्णय लिया है। वहीं कुछ अधिकारियों को राहत भी दी गई है। भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई खत्म कर दी गई है। इसके अलावा 2 अन्य प्रकरणों में आरोप साबित नहीं होने पर 4 अधिकारियों को दोष मुक्त कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने और जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए आज भरतपुर संभागीय आयुक्त नन्ली कठोतिया की अध्यक्षता में किसान प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त ने एक अहम बैठक सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर तथा सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की। संभागीय आयुक्त ने बताया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दोनों जिलों के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद का शांतिपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान खोजना है।
1: 2026-27 के तहत पांचना बांध के समीप स्थित 39 गांवों के लिए सिंचाई परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी डीपीआर तैयार की जा रही है, जो कि जुलाई माह के अंत तक संपन्न की जा सकेगी और ये इससे संबंधित निविदा आमंत्रित की जाकर अतिशीघ्र। इसी क्रम में हमने जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर और जिला कलेक्टर करौली से भी हमने वार्ता की है और इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया है। बांध में जलापूर्ति के गतिरोध को दूर करने की दृष्टि से हम जो दोनों ही पक्षकारों के प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं, वो आए और आकर के हमसे वार्ता करें ताकि इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जा सके।
0: और अब मौसम। राज्य में पिछले 2-3 दिनों में कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 39.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दौसा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश

0: दर्ज की गई। विभाग ने आज से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से आज राज्य के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभाग के लगभग 33 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी, आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: श्रोता, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से FM बैंड 102.9 MHz पर। आइए आपको सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

0: खुशखबरी
1: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।

0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
3: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें, आज है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, यानी सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज 2026 की थीम है इस डे के लिए। ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। भोजन विरासत का जश्न है इसका अर्थ है। इसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्य ज्ञान, स्थानीय सामग्री और पर्यावरण अनुकूल खान पान को बढ़ावा देना है। सतत खान पान का मतलब है ऐसा भोजन चुनना जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भोजन कहाँ और कैसे उगाया जाता है तथा हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है। इसका महत्व ऐसा है कि हमें ध्यान देना होगा प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और ऊर्जा की बचत की, और स्थानीय किसानों को समर्थन देना, यानी कि उन्हीं से मौसमी सब्जियां और फल खरीदना। भोजन की बर्बादी में कमी हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। पारंपरिक और क्षेत्रीय खाद्य संस्कृति का संरक्षण, ये भी तो हमारा कर्तव्य है। वैसे क्या करना चाहिए? स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां ही खाना चाहिए और उन्हें किसानों से ही खरीदना चाहिए। भोजन की बर्बादी को बिल्कुल ना करें। दालें, बीन्स और हरी सब्जियां अधिक खाएं। जैविक कचरे से खाद यानी कंपोस्ट बनाएं। प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। इस दिवस का संदेश है कि छोटे छोटे टिकाऊ खाद्य विकल्प अपनाकर हम स्वस्थ जीवन और सुरक्षित पर्यावरण में योगदान दे सकें। और सुनिए ये गीत जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज में, दावते इश्क फिल्म से। कौसर मुनीर के शब्द, साजिद वाजिद का संगीत।

0: है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?
1: कभी खुशी कभी गम इस फिल्म का गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर की आवाजों में समीर का लिखा गीत है। धुन बनाई है संदेश सांडिल्य ने।

whatever.

0: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था,
1: आंखें खुली हो या

फिल्म मोहब्बते से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उद्भव और कुछ साथी कलाकारों की आवाजों में, जिसमें शाहरुख खान, उदित नारायण, मनोहर शेट्टी, प्रथा मजूमदार और साथियों के स्वर थे, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। डीजे आ गया आपकी रेडियो दोस्त।

0: गेस्ट पूजा नारानिया को नमस्कार।
1: श्रोताओं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको पुनः सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से।
4: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान।

ज्ञान सिंह का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत दान सिंह के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। दान सिंह खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते।

ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि दानसिंह की प्रतिभा

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि डांसिंग ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में डांसिंग को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

0: आया है।
1: यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था वो फ्लैट में डांसिंग के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। डांसिंग ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964, मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही है।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारेलाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी, और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

0: इस गाने को लिखा है डॉक्टर हरिराम आचार्य ने। फिल्म माय लव का गाना
1: ठीक है रात में हो गई उनसे।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी याद।

0: भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। अब योग शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम योग वाणी भाग 14 में सुनते हैं एक वार्ता। विषय है आधुनिक जीवन शैली को कैसे ठीक करें। वार्ताकार हैं वैद्य लवकुश पाराशर।
1: आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ प्रस्तुत करता है विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ योग वाणी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: योगवाणी की इस कड़ी में हम जानते हैं हमारी आज की आधुनिक जीवन शैली कैसी है और योग से आधुनिक जीवन शैली को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं आधुनिक जीवन शैली कैसी है। आज के हमारे योग शिक्षक हैं वैद्य लवकुश जी पाराशर।
1: हमें एक बार प्राचीन जीवन शैली को समझना होगा। पहले हमारे जीवन के लगभग सभी कार्य बिना मशीनों के द्वारा शारीरिक परिश्रम के द्वारा ही होते थे। वातावरण स्वच्छ था, प्रदूषण नहीं था, खान पान शुद्ध था, व्यक्ति मानसिक रूप से शांत था, जिससे प्रकृति व मनुष्य का संतुलन बना हुआ था। धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी और पूर्व का सब उलट गया। कार्य मशीनों से होने लगा, वातावरण प्रदूषित हो गया, खान पान मिलावटी हो गया, मानसिक अशांति बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप शारीरिक व मानसिक रुग्णता बढ़ने लगी। हम बाहर से कितना भी बदलाव लाना चाहें, कभी नहीं होगा जब तक हम समस्या के मूल कारण मन के बदलाव पर कार्य नहीं करेंगे। आज की शिक्षा प्रणाली भी सिर्फ नैतिकता के आगे नहीं जा पाती, वह सिर्फ अच्छे संस्कार मात्र तक जाती है, जबकि समस्या गहरी है। समस्या अचेतन मन के स्तर पर है, जहां पर योग जैसी आध्यात्मिक प्रणालियों के अलावा कुछ काम नहीं करता। आज की जो आधुनिक जीवन शैली की जो भी समस्याएं हैं, फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या फिर आर्थिक, सभी को सिर्फ योग जैसी पद्धतियों के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है।
0: अभी हमने जाना हमारे रहन सहन की आधुनिक जीवन शैली कैसी है। अब जानते हैं योग से आधुनिक जीवन शैली किस तरह से ठीक की जा सकती है। आज के हमारे योग शिक्षक से।
1: योग के द्वारा शारीरिक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, व्यक्ति ऊर्जावान हो जाता है, अनेक विशिष्ट शक्तियां व्यक्ति में आने लगती हैं, जिससे हमारा शरीर आज की परिस्थितियों में सहज रह पाता है। वह इन सब से दृढ़ता से मुकाबला करने में सक्षम हो जाता है। योग के द्वारा हमारा मन शांत हो जाता है, जिससे हमारी समझ व क्षमता में वृद्धि होती है। हमारे सभी कार्यों में सात्विकता आने लगती है। हमारे द्वारा स्वतः अनैतिक कार्य नहीं होते, फिर हमें नैतिकता को जबरन नहीं ओढ़ना होता, वह हमारा स्वभाव बनने लगता है, जिससे अंतर्द्वंद समाप्त होने लगता है और हम अपनी अंतःसत्ता को उपलब्ध होने लगते हैं। यह मनोस्थिति हमें आत्मानंद की ओर लाती है, जो हर मानव के जीवन का परम लक्ष्य है।
0: योगवाणी की आज की कड़ी में हमने जाना

हमारी आज की आधुनिक जीवन शैली कैसी है और योग से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। आज के हमारे योग शिक्षक थे वैद्य लवकुश जी पाराशर। योग से जुड़ी नई जानकारी लेकर कल इसी समय फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।

योग शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम योग वाणी भाग 14 में अभी आपने सुने वेद्य लवकुश पाराशर से वार्ता। विषय था आधुनिक जीवन शैली को कैसे ठीक करें। ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोता, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से FM बैंड 102.9 MHz पर। अब फिल्म संगीत के अंतर्गत अभिनेत्री नूतन पर सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं दीपक मेहता।
4: वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप सुन रहे हैं 102.9 मेगाहर्ट्ज मेरा चैनल आकाशवाणी चित्तौड़गढ़। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे उनकी, जिनकी आवाज में एक ठहराव और जिनकी आंखें बोलती थी। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 50 और 60 के दशक में भारतीय सिनेमा को बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीमा, सुजाता, बंदिनी जैसी फिल्मों की जान बेमिसाल नूतन की। अगले 25 मिनट तक आप जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज खुलेंगे नूतन की जिंदगी के कुछ अनसुने पन्नों के राज।

नूतन समर्थ बहल, जिन्हें नूतन के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया, भारतीय सिनेमा के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली नूतन अक्सर अपरंपरागत माने जाने वाली संघर्षरत महिलाओं की भूमिका में अपने स्वाभाविक अभिनय के लिए जानी जाती थी।

चार दशकों के अपने कैरियर में उन्होंने 80 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, जो शहरी प्रेम कहानियों से लेकर सामाजिक यथार्थवादी नाटकों तक विभिन्न शैलियों की थी। उन्हें 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के साथ उस समय का रिकॉर्ड 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है।

0: फिल्म निर्माता कुमार सेन समर्थ और फिल्म अभिनेत्री शोभना समर्थ की बेटी नूतन का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में 1950 में अपनी मां द्वारा निर्देशित फिल्म हमारी बेटी से अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने नगीना और हम लोग जो कि 1951 में आई थी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन पहचान मिली 1955 की उनकी फिल्म सीमा से नूतन को। और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था।
1: क्या

1960 से लेकर के 1970 के दशक के अंत तक मुख्य भूमिकाएं निभाना जारी रखा और सुजाता 1959, बंदिनी 1963, मिलन 1967 और मैं तुलसी तेरे आंगन की इन फिल्मों में महत्वपूर्ण मुख्य भूमिकाओं के साथ 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।

इस अवधि की उनकी कुछ अन्य फिल्मों में अनाड़ी, छलिया, तेरे घर के सामने, खानदान, सरस्वती चंद्र, अनुराग और सौदागर

1980 के दशक में नूतन ने चरित्र भूमिकाएं निभाना शुरू किया और अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले तक काम करती रही।

उन्होंने साजन की सहेली जो कि 1981 में आई थी, मेरी जंग जो कि 1985 में आई थी, और नाम जो कि 1986 में आई थी, जैसी फिल्मों में

उन्होंने सह कलाकार देवानंद के साथ एक लोकप्रिय फिल्मी जोड़ी बनाई और दोनों ने एक साथ चार फिल्मों में काम किया और ये चारों फिल्में सुपरहिट हुई। पेंगस्ट 1957, बारिश 1957, मंजिल 1960 और तेरे घर के सामने 1963 में आई थी।

नूतन पर बातें करने को बहुत कुछ है, लेकिन वक्त अब इजाजत नहीं देता। फिर कभी मौका मिला तो जरूर उन पर और भी बातें करेंगे। आज इतना ही। अब दीपक को दीजिए इस प्रोग्राम से इजाजत। नमस्कार।

उत्तम संगीत के अंतर्गत अभिनेत्री नूतन पर विशेष कार्यक्रम अभी आपने सुना। इसके प्रस्तुतकर्ता थे दीपक मेहता। श्रोताओं, यह आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

चेहरे की मुस्कान सब देख लेते हैं, लेकिन मन की पीड़ा कौन समझ पाता है? जो सबके जीवन में खुशियां बिखेरती है, उसके मन को भला कौन जान पाता है? मन की शांति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, स्वस्थ मन से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। जी हाँ बहनों, स्वस्थ मन से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। इसी के साथ आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। बहनों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही ध्यान देते हैं, जबकि मानसिक सेहत इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वस्थ मन से ही सशक्त महिला और समृद्ध समाज की नींव खड़ी होती है। महिलाएं परिवार और समाज की आधारशिला होती है। वे पत्नी, माँ, बहन, बेटी, जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी अलग अलग प्रकार से भूमिकाएं निभाती है। वे सभी का ख्याल रखती है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो अपनी भावनाओं को, अपनी मानसिक स्वास्थ्य को वो हमेशा पीछे रखती है। हम मानते हैं कि महिलाएं परिवार की धुरी है, अगर वे खुश हैं तो परिवार खुश है, लेकिन अपनी भावनाओं को दबाना उतना ही खतरनाक है जितना प्रेशर कुकर के दबाव को रोकना। अगर सीटी नहीं आएगी तो दबाव से प्रेशर कुकर फट जाएगा। अगर हम मोबाइल चार्ज नहीं करेंगे तो वो काम करना बंद कर देगा। उसी प्रकार मानसिक शांति के लिए मन का नहीं करेंगे, अपनी रुचियों को समय नहीं देंगे, उन्हें विकसित नहीं करेंगे तो

शरीर तो काम करेगा हमारा, लेकिन मानसिक थकान से तनाव का दबाव पैदा होगा और यही असंतुलन घर में बिना वजह कलह पैदा करता है। अपनी भावनाओं को दबाकर दूसरों की खुशियों को प्राथमिकता न दे। मन की थकान को पहचानना भी जरूरी है। खुलकर अपनी बात रखें, स्वयं के लिए समय निकालें, योग ध्यान करें, अपनी रुचियों को समय दें और उन्हें विकसित करें। घूमें, फिरें, प्रकृति के नजदीक रहें, सकारात्मक जीवन शैली को अपनाएं। दूसरों का ख्याल जरूर रखें, लेकिन अपनी खुशियों की कीमत पर नहीं, क्योंकि यदि आप प्रसन्न रहेगी तो पूरा परिवार प्रसन्न होगा।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: रिश्ते खून से नहीं अपनत्व से बनते हैं। पड़ोसी रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम चुनते नहीं बल्कि जीवन भर निभाते हैं। एक समय था जब पड़ोसी सिर्फ आसपास रहने वाले लोग नहीं होते बल्कि परिवार का ही हिस्सा हुआ करते थे। शादी ब्याह बीमारी मेहमान नवाजी इन सब में पड़ोसी ही सबसे पहले काम आते थे। मेहमान अगर घर आ जाए

तो घर के बर्तन, चारपाई, खाने पीने और जरूरत का सामान कब पहुंच जाता पता ही नहीं चलता। विवाह प्रस्ताव यदि कोई आता तो पड़ोसी इतनी आवभगत करते पता ही नहीं चलता कि हम किसके मेहमान हैं। आगे कुछ और पूछताछ की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि पड़ोसी से रिश्ता अच्छा है मतलब सब कुछ ठीक है। बीमार होने पर पड़ोसी भी रात भर जाग कर सेवा करते और धन का इंतजाम कैसे कर लेते पता ही नहीं चलता। बुजुर्गों की सलाह माता पिता के समान ही मानी जाती, उनका कोई आदेश नहीं टाला जाता। बुजुर्ग भी अपने आसपास के बच्चों का, यहाँ तक कि पूरे मोहल्ले के बच्चों का ऐसे ख्याल रखते कि उनके डर से बच्चे पूरे अनुशासन में रहते थे, कोई उनका विरोध नहीं करता। यहाँ तक कि माता पिता भी बुजुर्ग पड़ोसी का कोई विरोध नहीं करते और पूर्ण आश्वस्त रहते कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक दूसरे की मदद करके ये एहसास दिलाते कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सब साथ हैं। घरों में दीवारें जरूर होती, लेकिन दिलों में दीवारें कभी भी खड़ी नहीं होती। आज सोशल मीडिया में दुनिया को जोड़ दिया, लेकिन पड़ोसी से दूरी हो गई। एकल परिवार, व्यस्त जिंदगी, ऊंची ऊंची इमारतों में वर्षों तक साथ रहते, लेकिन एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। ये बदलाव चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इसे बदला भी जा सकता है। एक दूसरे का हालचाल पूछना, छोटी मोटी मदद करना, मुश्किल समय में सहारा बनना, ये एहसास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। सच्चा पड़ोसी धर्म ही हमारे समाज को मजबूत बनाता है। पड़ोसी धर्म की सुंदर परंपरा को आइए फिर से जीवित करते हैं। मुस्कान के साथ एक दूसरे का हालचाल पूछे, हो सके तो छोटी मोटी चीजों का आदान प्रदान भी करते रहें। अच्छा पड़ोसी जो रिश्ते में नहीं होता है, लेकिन हर रिश्ते से बढ़कर साथ निभाता है, ये ईश्वर का अनमोल उपहार है। इसे सहजना आप जरूर सीखें।

बहनों, शरीर को स्वस्थ रखने में और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में योग और मेडिटेशन काफी लाभदायक है। विशेषज्ञ के अनुसार योग शरीर को अंदरूनी शक्ति प्रदान करने के साथ साथ तमाम तरह की गंभीर बीमारियों से हमें सुरक्षित रखता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, तनाव कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए, बीपी कम करने के लिए, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करने के लिए, ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए योग को अवश्य अपनाना चाहिए। आज की पीढ़ी जिम या एरोबिक्स से ज्यादा योग की तरफ अपना ध्यान लगा रही है, पहले की अपेक्षा योग को ज्यादा अपना रही है। योग का असर भारत ही नहीं बल्कि

0: समूचे विश्व में नजर आ रहा है। योग स्टूडियोज खोले जा रहे हैं, योग के जरिए सकारात्मक बदलाव लाए जा रहे हैं। योग सभी के लिए फायदेमंद है, खासकर महिलाओं के लिए। बालिकाओं और महिलाओं के लिए योग, इस विषय पर अब आपको सुनवाते हैं एक वार्ता आशा कंवर पवार से।
1: मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को बनाए रखने के लिए योगाभ्यास करना आवश्यक है। यह जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन लाने में मदद करता है। स्वस्थ तन और मन से व्यक्ति अपना और अपने परिवार का भी अच्छे से ख्याल रख सकता है। योग किसी के भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक व आध्यात्मिक विकास की उत्तम स्थिति में सहायक है और बालिकाओं व महिलाओं की परिवार में अहम भूमिका होने के कारण योग उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक समय में महिलाएं अपने करियर और परिवार दोनों की जिम्मेदारी उठा रही हैं, इसलिए जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित करने में सक्षम होने के लिए और अपने ऊपर कार्य का अधिक बोझ होने पर भी शांत रहने के लिए योगाभ्यास आवश्यक हो जाता है। परिवार और घर का प्रबंधन करते समय महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं, जिनसे उन्हें कई तरह की मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, हार्मोनल डिसऑर्डर, थायराइड, मोटापा, तनाव, एंग्जाइटी आदि आजकल काफ़ी देखने को मिल जाता है। ऐसे में योगाभ्यास की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। आज की प्रचलित कई बीमारियों में से 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक मन से जुड़ी हैं। ऐसे में योग शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। महिलाओं को परिवार चलाने में तनाव का सामना करना पड़ता है और कुछ महिलाओं को तो अपने करियर और पारिवारिक जीवन दोनों में समन्वय स्थापित करना पड़ता है। कॉरपोरेट जीवन, काम के लंबे घंटे और अपने परिवार की देखरेख का अतिरिक्त दबाव महिलाओं के भावनात्मक स्वास्थ्य, फिटनेस के स्तर, नींद के चक्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। योग इन सभी स्थितियों में लाभदायक है। हार्मोन संतुलन व प्रजनन स्वास्थ्य। प्रजनन चक्र और इससे जुड़ी हार्मोन संबंधी समस्याओं के कारण पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। यौवन से लेकर बच्चे के जन्म और फिर रजोनिवृत्ति तक महिला के शरीर में जीवन भर बहुत सारे बदलाव आते हैं। इन चरणों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को दूर करने के लिए योग का निरंतर अभ्यास आवश्यक है। अनियमित पीरियड्स। आजकल युवा महिलाओं को प्रभावित करने वाली एक सामान्य समस्या है अनियमित माहवारी। आम तौर पर एक मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का होता है, लेकिन अगर आपको 35 दिनों से अधिक समय या 21 दिन के भीतर ही रक्तस्राव होता है तो इसे अनियमित माना जाता है। ऐसा होने के कुछ कारण हैं, PCOS, बहुत अधिक व्यायाम करना, कुछ दवाओं का उपयोग, स्तनपान, गर्भावस्था, थायराइड, तनाव आदि। मासिक धर्म की अनियमितता के लिए डॉक्टर से परामर्श लेने के साथ ही योग का सहारा लेना चाहिए। कुछ मुद्राएं एवं आसन जैसे सूर्य मुद्रा, लिंग मुद्रा, शक्ति मुद्रा आदि तथा धनुरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन आदि द्वारा इनमें लाभ होता है। रजोनिवृत्ति का समाधान। रजोनिवृत्ति एक ऐसी अवस्था है जो महिला के

प्रजनन चक्र के अंत का संकेत देती है और यह महिलाओं के लिए कठिन चरण होता है। इस समय शरीर में कई प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन होने के कारण कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। थकावट, मूड में उतार चढ़ाव और कमर दर्द, घुटने आदि का दर्द आदि समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। ऐसे में योग एक बहुत ही कारगर उपाय है। यह उन्हें शारीरिक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से निपटने में सहायक होता है। कुछ आसन जैसे अधोमुख श्वानासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, हलासन, वज्रासन आदि व शीतलीकरण, शीतकरी, उज्जयी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम आदि करने से इन परेशानियों से हमें राहत मिल सकती है। वैसे तो सुंदरता देखने वालों की आँखों में होती है, फिर भी महिलाओं और किशोरियों को खूबसूरत व आकर्षक दिखने का भी काफ़ी दबाव रहता है। योगाभ्यास से हम न सिर्फ तन से अपितु मन से भी सुंदर बनते हैं। अत्यधिक तनाव के चलते आजकल बालों का झड़ना व कम होना, त्वचा का रूखा व शुष्क होना भी चिंता का विषय बनकर महिलाओं को तनाव देता है। तो योग करके जब हम मन से प्रसन्न व प्रफुल्लित रहते हैं तो तनाव के अभाव में हमारे बाल और त्वचा कांतिवान बनते हैं। साथ ही योगासनों से सभी प्रकार के परिसंचरणों में शुद्धि होने से भी इनमें लाभ होता है। महिलाओं की योग करने में बाधाएं और उनका निवारण, अनेकों भूमिकाएं निभाते हुए आज की महिलाओं की सबसे बड़ी शिकायत स्वयं के लिए समय निकालने की ही है। स्वास्थ्य जागरूकता व योग के महत्व को जानते हुए भी सबसे बड़ी बाधा उन्हें समय निकालने की ही है। लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि यदि वे स्वयं के स्वास्थ्य के लिए समय निकालती हैं तो वे और बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकती हैं। इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करके वे स्वयं ज़्यादा प्रसन्न व तनाव रहित रह सकती हैं। यहाँ इसका समाधान समय प्रबंधन है। यदि वे लगातार 1 या 1.5 घंटा योग के लिए नहीं निकालती हैं तो वे छोटे छोटे अंतराल में योग कर सकती हैं। सर्वप्रथम यदि वे 15 मिनट जल्दी जाग जाएं, तो कुछ आसन जैसे सुप्त ताड़ासन, सुप्त वक्रासन, सेतुबंधासन, मार्जरी आसन आदि का अभ्यास सुगमता से कर सकती हैं। साथ ही 7 से 8 मिनट प्राणायाम करके दिन भर के लिए ऊर्जावान हो सकती हैं। लंच से पहले यदि आप घर पर हैं तो मैट पर, अन्यथा ऑफिस चेयर पर बैठे बैठे कुछ सूक्ष्म व्यायाम, ताड़ासन, हस्तपादासन, वक्रासन आदि करके 5 मिनट के लिए कोई भी प्राणायाम, नाड़ी शोधन विशेषतः कर सकती हैं। ऐसा करने से आपका रक्त संचरण अच्छा होकर आप ऊर्जावान महसूस कर सकती हैं। संध्या के समय घर पहुंचकर और यदि घर पर ही हो तो शाम के समय फिर से 10 से 15 मिनट का आसन प्राणायाम, जिसमें योग निद्रा, शव आसन प्राणायाम द्वारा हम दिन भर की थकान व तनाव से मुक्त हो सकते हैं। सोने से पूर्व रात्रि भोजन जल्दी लेकर हम सोने से पूर्व भी कुछ हल्के आसन जैसे विपरीत करणी, जिसमें पैरों को, दोनों पैरों को ऊपर उठाकर दीवार के सहारे या वैसे ही रखते हुए, तथा सोते समय उज्जयी गहरी लंबी श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। इन सरल अभ्यासों के द्वारा महिलाएं अपने दिन भर के तनाव थकान से मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। महिलाओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हालांकि यहाँ योग के महत्व पर सलाह दी गई है, लेकिन योग अभ्यास एक प्रोफेशनल के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। एक प्रमाणित प्रशिक्षक से योग सीखकर हम श्रेष्ठतम लाभ ले सकते हैं। डिलीवरी के तुरंत बाद योग या कोई भी एक्सरसाइज करना सही नहीं रहता है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कम से कम 6 हफ्ते के बाद ही

0: योग शुरू करें। सिजेरियन ऑपरेशन से रिकवर करने में इससे ज़्यादा समय लगता है। हालांकि हर महिला में रिकवरी का समय अलग होता है, इसलिए आप योग या एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। साथ ही ध्यान देने की बात है, आसन प्राणायाम के साथ ही ध्यान के द्वारा हम जीवन को आनंदमय, तनाव मुक्त और ऊर्जावान बना सकते हैं और जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना सकते हैं।
1: बालिकाओं और महिलाओं के लिए योग, इस विषय पर अभी आपने सुनी वार्ता आशा कंवर पवार से। अब सुनते हैं ये गाना।

बहनों, कार्यक्रम महिला जगत में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे पर। 21 दिसंबर सन 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे घोषित किया और 18 जून 2017 से इसे पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ है अच्छा भोजन चुनने, पकाने और खाने का अभ्यास या कला। इस दिवस पर विचार किया जाता है कि खाद्य सामग्री कैसे उगाई जाती है, कैसे बाजारों से होकर हमारी प्लेटों तक पहुंचती है। यह भी विचार किया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि किसान, गोदाम, विक्रेता तथा फूड प्रोसेसिंग करने वाले यूनिट तथा किसी के भी पास से खाने की वस्तुएं बर्बाद न हो, क्योंकि हर साल 1.30 लाख करोड़ किलो खाद्य सामग्री बर्बाद होती है, जिससे 26 करोड़ लोगों का 6 माह तक पेट भरा जा सकता है। तो दुनिया भर में खाने को बर्बाद होने से बचाने के लिए सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे पर विचार किया जाता है और इसका समाधान किया जाता है। बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति में अन्न को बर्बाद करना पाप माना गया है। भोजन उतना ही ले थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली में। विदेशी और भारतीय संस्कृति के रंग में रंगा हुआ राज्य गोवा, जो एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है। गोवा 450 साल तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। आज भी पुर्तगाली परंपरा की छाप इस राज्य में देखने को मिलती है। गोवा क्रांति दिवस है आज। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने को कहा। 18 जून को अपने जोशीले भाषण से आजादी के लड़ाई को मजबूत किया। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने इसे पुर्तगालियों से मुक्त कराया और 1987 से ये एक स्वतंत्र राज्य बना। यहाँ के बीचेस, चर्च, किले, म्यूजियम आदि दर्शनीय स्थल हैं। बहनों, चलते चलते आपको बता दें कि आज जानी मानी अभिनेत्री नसीम बानो की पुण्य तिथि है। 18 जून सन 2002 में इनका निधन हुआ। इनकी जो पुत्री है वो सायरा बानो है और वो भी जानी मानी एक लोकप्रिय भारतीय फिल्म सिनेमा की अभिनेत्री है। तो आज का सफर जो है बस यहीं तक। आज्ञा दे, नमस्कार।

0: कार्यक्रम महिला जगत अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है, एफएम बैंड 102.9 मेगा हर्ट्ज पर। आइए आपको सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
1: मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की गाए इस भक्ति गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं बेगम अख्तर का गाया मिर्जा गालिब का ये कलाम।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए विशाल मिश्रा का गाया ये ओगा फिल्मी गीत। इसे लिखा है कौशल किशोर ने और धुन बनाई है विशाल मिश्रा ने ही।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं समीर का लिखा ये गैर फिल्मी गीत, आवाजें ऋचा शर्मा और साबरी बंधुओं की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब का ये कलाम।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने मिर्जा गालिब का ये कलाम सुना, और आइए अब सुनते हैं संत नानक देव का ये शब्द। गायिका हैं दिलराज कौर।

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन

0: उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। इसे लिखा है रोचक कोहली ने।

ये स्वर था आयुष्मान खुराना का और आइए अब सुनते हैं तनिष्क बागची का लिखा और संगीत बद किया हुआ ये गैर फिल्मी गीत। आवाजें गुरु रंधावा और निकिता गांधी की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में कुणाल वर्मा का ये गीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यह आवाज है असलम सावरी की।

0: औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ दाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित। पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस सभा में, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर यानी जाने माने संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम दिल की राहें, गीतकार नक्श लाहिलपुरी।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। गीतकार नक्श लायलपुरी और संगीतकार मदन मोहन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, स्वर लता मंगेशकर का, और फिल्म का नाम वो कौन थी।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है शराबी।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी अपनी फिल्म शराबी का ये गीत सुना। आइए इसी आवाज में अगला गीत फिल्म नौनिहाल से हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है जहां आरा, रचना राजेंद्र कृष्ण की और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाजों में यह था फिल्म जहां आरा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीत बद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महाराजा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपनी फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

श्रोताओं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है FM 102.9 MHz पर। दोपहर का 1 बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। हम रिले करेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से, आइए प्रतीक्षा करते हैं।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। श्रोताओं, दिन का एक बजने वाला है। थोड़ी देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और अन्य ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत 26,000 से अधिक किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 18,907 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के साथ योजना की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में राज्यों को पीएम जनमन योजना के तहत वंचित और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों वाले क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सड़क संपर्क को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर क्रीड़ा भारती राजस्थान और RAC के जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस

0: अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नियमित योग एक स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रदेश में सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 4 जून से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 1,10,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा कार्रवाई वाहनों पर लगी ब्लैक फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट को लेकर हुई है। इसके अलावा अवैध हूटर, लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न और वाहनों की बनावट में अवैध फेर बदल करने वालों पर भी पुलिस पूरी सख्ती बरत रही है। अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र की सभी 208 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स को ईआरपी प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ ही ये बैंक राजस्थान का पहला ऐसा केंद्रीय सहकारी बैंक बन गया है जिसकी सभी चयनित समितियां डिजिटल प्रणाली से जुड़ गई हैं। केंद्र सरकार की कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत अजमेर और ब्यावर जिले की इन समितियों को ऑनलाइन किया गया है। इस नई डिजिटल प्रणाली से किसानों को फसल प्रबंधन, बीज और उर्वरक वितरण सहित अन्य वित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। भरतपुर में आज खेत बचाओ अभियान के तहत महिला किसान जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम में निदेशक विजय वीर सिंह ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना जरूरी है। उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने का आह्वान किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने जयपुर में रेल निकुंज पॉली क्लिनिक का उद्घाटन किया। जगतपुरा स्थित रेल निकुंज परिसर में बनाए गए इस पॉली क्लिनिक का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को एक ही स्थान पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहां मरीजों को एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद ओपीडी के साथ साथ डे केयर, फिजियोथेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डेंटल जैसी बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSSI ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य पदार्थों की रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल खाद्य योग और जंग रोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय किया है। खाद्य नियामक ने बताया कि कुछ खाद्य व्यवसायों को खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान जंग लगे टूटे हुए चाकू या किसी अन्य प्रकार के अनुपयुक्त काटने के उपकरणों का उपयोग करते हुए पाया गया है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और संबंधित विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से FM बैंड 102.9 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा हमारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने।

0: हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोड़ जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
1: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
1: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
0: और जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में। तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोता, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहां तक मछलियों की बात है, यहां मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहां लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका,

0: इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम। तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी।

पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो उसके भीतर थिरक फुरक

0: मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा।
1: तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
2: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी?
1: तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
2: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर।
0: इस अपने पास के फूल को तूने देखा?
1: ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है।
0: चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे।
1: वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है?
0: इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है?
1: वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ,
0: कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
2: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
3: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया, और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
3: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया, और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती।

0: तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, हैं? बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
2: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
4: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
4: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
1: माँ
4: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
4: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
5: बड़ी
4: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अभी आपने सुना।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: श्रोता, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से FM बैंड 102.9 MHz पर। आइए आपको सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था। पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज्यादा हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं। माँ जी नैया ढूंढी किनारा, इस गीत से हमें बेहद मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई ना कोई सबको लगता है प्यार, क्या कहना है इस गीत का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नौका विहार तो बहुत बार किया है, पर पन्ना सफारी के दौरान कैन नदी में किया हुआ नौका विहार ताम्र याद रहेगा। साफ स्वच्छ पानी, नीचे तक स्पष्ट दिखाई देती रेत और पत्थर, साथ में चारों ओर घना जंगल, आह क्या ही खूबसूरत नजारा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि केवट बड़ा चतुर और होशियार था, उसने प्रभु राम से कहा कि हम और आप दोनों एक ही हैं, मैं नाव से नदी पार करता हूं और आप भवसागर से पार करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चेन्नई, गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से घिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूँ, क्या बात है। थोड़ा सा बताते कैसा लगा आपको वहां घूमना, तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया मांझी नैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है, मांझी नैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूं जहां नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी। हमारे जमाने में गंगा नदी पर एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे। पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे। सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया, वो शाम कुछ अजीब थी। उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी, लेकिन वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूं, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी, याद तो है, लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं, ये तो आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है। हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर लेक की सैर की। वहीं चार चिनार नामक स्थल देखा। जहां भी घूमने जाती हूं वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूं। केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी नदी पर, साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था। पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी 2-1 साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर भेंट द्वारका गए थे और कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक स्टीमर से गए। भले ही अपने गंगा जी में नाव पर सवार न हुए हों, लेकिन अमरकंटक नर्मदा नदी पर जाना चाहते हैं। अच्छा, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार का सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है फिल्म सफर का, नदिया चले चले रे तारा तुझको चलना होगा। बहुत ही प्रेरणादायी शब्दों से इस गीत को लिखा है, आदमी कितना ही हताश परेशान हो उस गाने को सुनकर नए उत्साह से आगे बढ़ने की और कूच कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं

कि आवारा फिल्म का गाना कम ही सुना है, सिर्फ देखते समय ही सुना है। कयास लगाना कठिन है लेकिन गाना बेहद सुंदर है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी का गीत किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार साहब की बोल है, हेमंत कुमार साहब की धुन।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी, एक गाना जो अभी आप सुना रहे हैं, वो शाम कुछ अजीब थी मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया फिल्म का शीर्षक गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि परदेशियों से ना आंखियां मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के गोराई बीच से एसल वर्ड जाना हुआ था। अच्छा।

वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे फिर आपकी लिस्ट में कौन सी गाने थे? वही एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है, सुनील दत्त और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं, एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि एक से बढ़कर एक मनभावन गीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है। क्या कहें आपको, आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना? वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी भी है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उसका जो है उसकी डगमगाती नहीं है सही हो गई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज की नाव बनाते थे, अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही है उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है, लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था। आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था। परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था। इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला जो बहुत ही रोमांचित रहा। इसी तरह ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताजा कर देंगे। बिल्कुल ताजा तो कर ही रहे हैं, आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना। चलिए सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन। आपकी लिस्ट में एक गीत था ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि दो लफ्जों की है कहानी ये गाना और कहां ले चले हो मुसाफिर दुर्गेश नंदिनी का, ये दोनों गाने अभी तक नहीं बजे क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, दो लफ्जों की है कहानी तो हमने इसलिए नहीं बजाया कि हमने सोचा कि फिर आप श्रोता शिकायत करेंगे कि भाई कितनी बार तो ये गीत और सभाओं में बज गया है और आज फिर इस गाने को मंदाकिनी जी लेकर आ गई है, तो हमने उस गाने को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। हाँ, दुर्गेश नंदिनी का गाना तो शामिल नहीं हुआ, चलिए फिर किसी और कार्यक्रम में इस गाने को हम लेकर आएंगे, ठीक है? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, दो जासूस का गीत पुरवैया लेके चलूं वाला, ये तो अब अगला गीत है आपकी पसंद का जो आप सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से रोज नदी या समुद्र के किनारे दूसरे किनारे डेली अप एंड डाउन करते हैं, नौकायन से सफर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि लोग मुंबई में ट्रेन से सफर करते हैं, बसों से सफर करते हैं, ऐसे नौकायन लोग करते हैं, रोज नौका के द्वारा सफर होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कनाडा गए वहां गांव नाव में बैठे किसी जन्नत से कम नहीं लगा, हम उसे कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गाने आप सुनवा रही हैं हमें तो ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग, क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूँ फील ज्यादा कर रही हूँ, हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जल तरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे जरूर शामिल करेंगे। वहीं श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी मथुरा थाईलैंड फुकेट दुबई यूएसए नायगरा फॉल पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था, तेरे आने से सज गई ये टूटी फूटी नाव, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं, इतने सारे गीत हैं, किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया, ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

0: लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस, गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से, मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
1: श्रोताओं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आप दोपहर 2:30 पर पुनः सुन सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है, FM बैंड 102.9 MHz पर। दोपहर के 2 बजे हैं अब अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार। रिले होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए समाचारों के लिए करते हैं प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्चस्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है।

0: आता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित

0: आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं आएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से

0: दो लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से FM बैंड 102.9 MHz पर। आइए आपको सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। ये आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है, इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने, स्वर है लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम दो दिल।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

0: में दिवस इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका।
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे।
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो भी
1: क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात।
0: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं। ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें।
1: हाँ बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार, और आरती तुम्हें भी नमस्कार। हमारी बहुत सारी सखियां समय में सुन रही हैं।
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
0: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की। एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका है।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी। और आज एक खास दिन भी है, सतत कैस्ट्रोनॉमी।

0: का, और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में। और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी, और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई, तो गांव में जो मेले लगते थे, जो त्योहार होते थे, तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से, उस संगीत से, जो लोक संगीत था वहाँ का, उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज रच बस जाती है ना, तो जब आप उस चीज को गाते हैं तो वो बड़ी दिल से आवाज निकलती है।
1: बिल्कुल, और वो पूरा जो माहौल था ना, वो बचपन से उनको मिल गया था, और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका, तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की जो परंपरागत शैली है, यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि पांचवीं कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो, पहली छात्रा।
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है तो, और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गाँव से बहुत दूर था, और गाँव के स्कूल में पांचवी कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी, और यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के जमाने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खासतौर पर ऐसा हुआ करता था, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया, और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ, और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी, और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहां उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की, और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना, तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी,
0: और वो ए श्रेणी की कलाकार थी।
1: देखिए, मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
0: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डरा और फोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीरा जादियो और देवारा जारेजू, और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को, जो तो आपने बताया भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
0: जी और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि भाई
1: बिल्कुल
0: सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर
1: हाँ।
0: था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू है वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम का, ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता, और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज।
1: बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफी होते हैं।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। और किसी भी तरह की चीज हम खरीद सकते हैं ना। तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी, कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में उसे वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं, और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको
1: पढ़ना चाहिए,
0: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं। इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है।

0: और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं। पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीज़ें दे रखी हैं कि वो क्या चीज़ है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देखने देने के लिए कोई चीज़ ले रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज़ गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं या नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले, तो जरूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर वहां से खरीदें।
0: बिल्कुल, देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है। सेल देख कर खरीद ली जाती हैं चीज़ें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देखकर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजा कर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसी ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध दालें सब्जियां ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो सोच समझ कर ही।
1: और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी है आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे, बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षा यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीजों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल। और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया
0: जी।

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में।

0: और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें। और जैसा कि आपने बताया था कि उनकी पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेते हैं।
1: देखिए बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब भी आती हैं,
0: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं
1: जो
0: उनको पछतावा हो।
1: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूं तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े।
0: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, उन गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के पांचवें गुरु माने जाते हैं। और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
1: जी बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
0: और आज एक ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शबद कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी के जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है और लंगर यानी कि जो भोजन लंगर होता है उसकी व्यवस्था की।
1: बिल्कुल, और लंगर का खाना चंचली इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं
0: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है। वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने
0: पहले गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: ऐसी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
4: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
3: जी।
4: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं, और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
3: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
4: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
3: लेकिन मैंने कहा अमूमन की।
4: हाँ, ये तो है,
3: है ना। तो हमारे जो पुरुष होता कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
4: हूं। बिल्कुल बिल्कुल।
3: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
4: अच्छा।
3: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
4: जी। बिल्कुल।
3: चाय की एक बूंदी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी टिप है,
4: बहुत जरूरी है।
3: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते हैं। तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंदी गिरी है तो वो ना हो,
4: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं, और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
3: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, इससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
4: अरे वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, उन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ
3: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
4: बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
3: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना

0: एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा हो भूरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी सी गोली छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए। इससे ये थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे
0: की। जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट ले और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
1: बहुत बढ़िया। बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन है उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
1: बिल्कुल,
2: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप ठाणे में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं।
1: हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: वो एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को तो मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5,000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती, मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच
1: जी
0: प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग आपके पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ 4-5 पेड़? भाई हमने तो
1: 4-5
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गाँव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं मैम इतने 5-6 पेड़।
0: अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: देव फासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा शिमला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में ऐसा गाने?
1: नहीं मैम, नहीं नहीं पसंद नहीं है मैम।
0: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गाँव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टैल मार्बल और सिटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाते हैं वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारी

0: हैं।
1: क्या बात है, गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है। जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
0: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी,
1: 48
0: नॉर्मल फील लगता
1: जी
0: है।
1: तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
0: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं। जाए अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्र की, तरह की नदियाँ हैं जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
1: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
0: आपको सबसे मान
1: वो,
0: आपको पता है ये पहलगाम कश्मीर में पड़ता,
1: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के मौसम में गए थे। अच्छी बात ये है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
0: ये साजन फिल्म का नगमा ही देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ, वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पैदा पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने, बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है।
1: वो क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास? वो तो आना जाना रहता ही रहता है
0: जी। बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहाँ तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि वो शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे को रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 67-62 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले बाल वाले रेडियो चलते थे,
0: नहीं
1: लगती थी, ये उसकी ट्रेनिंग होती थी।
0: अच्छा।
1: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया, फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की।
0: अरे
1: बाल वाले रेडियो,
0: क्या बात है। तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: हाँ, रिपेयरिंग करता था और वॉल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वॉल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ, 5 बार 3 बार 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, आप तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले, अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा, अब तो सुनना तो और ज्यादा होगा, क्योंकि पहले आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारती आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
1: और मोबाइल,
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
1: दिक्कत होती थी। हाँ, इधर से उधर तक नहीं लगता था
0: जी, लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ, वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बॉडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने सारंगी वगैरह इतने भी उस टाइम तमाम, मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का,
0: बिल्कुल
1: हारमोनियम इतने अच्छे लगते।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम। और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते हैं हम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको। और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: तो आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी हमें देखो इतना साल हो गया छोटे।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लोग हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है,
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेख। हाँ। वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने। बस इतनी जी दो लाइन बोलनी थी।
0: जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
0: हाँ जी, हाँ
1: और
0: जी।
1: मक्खन घी दही सब कुछ।
0: क्या बात है,
1: चलता है फिर तो।
0: वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गाँव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है। गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया और धान हो गया।
0: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
1: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में आने लग गया ना हमारे इधर, भुट्टा हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं चारा बन जाता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए आज मुझे, फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
1: जी देखी है जी मैंने फिल्म।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकिजा। Oh,

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद कोरा श्रीनगर से, जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी, बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, और आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है। और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो कश्मीर का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसकी खासियत क्या होती है, थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, कौन ही जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी,
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे पीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम पीली पे लगा, मतलब उसमें
0: वो जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ, वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
0: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत तो गाते हैं।
0: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे तो।
1: चलिए, आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना तेरा इकरार है।
0: बहुत शुक्रिया, सुनते हैं सहेली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रही था।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया, सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी गाना सुनना चाहता हूँ मैं फिल्म चमत्कार का, जिसके बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक पे, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टहके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर। लेकिन
0: हाँ, हाँ,
1: अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है। वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
1: बिल्कुल,
0: आजाद
1: बिल्कुल।
0: रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन होता
1: बिल्कुल,
0: होगा।
1: ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा,
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और
0: अरे वाह,
1: मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: लगता है।
0: वाह,
1: और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब आप दाना डालते, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है। तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा
1: बिल्कुल
0: सुंदर
1: बिल्कुल।
0: लगता है ना।
1: मोरों के बीच में गांव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में ज्वार है, बाजरी है, लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं।
0: अच्छा।
1: और वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, ज्वार, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है
0: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है क्योंकि?
1: बिल्कुल आते हैं, चक्री का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गाँव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि
1: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते हैं, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे और हमारा जीवन, यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है, तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी

0: सकते हैं।
1: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है, हाँ। जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
0: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है?
1: नहीं, नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
0: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे, वो भी आपको पता ही होगा ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुंवारिका बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती है।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठा कर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
0: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधान छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपने बेटे के लुक को लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद का, इधर हमारे पूर्वज जो है ना वहाँ पर लगाए हुए हैं, आज से 100 साल के पहले आम
0: वही खा रहे हैं।
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम अब यहाँ महानगरों में, शहरों

0: में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है
1: जी। मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ
0: जी।
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे, हम आम खाने के लिए
0: जी, और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने
1: एकदम
0: कहा
1: सही
0: कि
1: बात।
0: आपके पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ, बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ
0: आम का जो बाग है,
1: जी।
0: बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ, लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियां होती हैं, जामुन के गुठले होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंगूर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाले देखेंगे
0: जी। बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी, बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है?
1: जी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और ऐसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे टावेल

0: लेके जाए, पानी की बोतल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि मैं पानी की वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
1: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
0: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
1: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाया जा सकते हैं ना अगर आप बागवानी करती हैं तो।
0: और हमारे इधर तो हम लोग गाँव में है तो घर में जैसे की गाय है भैंस है तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे की झारखंड की मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं।
1: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
0: हमारे तरफ धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
1: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
0: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
1: हुआ करता था,
0: दादी लोग हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते है ना उस टाइप का था,
1: चक्की जात वगैरह चक्री है ना।
0: जी जी
1: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
0: जी जी जी मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना।

0: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 2867-0288 और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का।
1: अभी तक आप सुन रही थी विविध

0: मुंबई का एसटीडी कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 2867-0288 और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662। मुंबई का
1: अभी तक आप सुन रही थी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है FM बैंड 102.9 मेगा हर्ट्ज पर। शाम की 5 बजे हैं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: फिल्म संगीत की हमारी आज की इस कार्यक्रम में सुनते हैं पहला गीत अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में। फिल्म है जिस देश में गंगा रहता है।

0: जिस देश में गंगा रहता है, इस फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी अभिजीत भट्टाचार्य की।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: भाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रही थी साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म थी हीरो हिंदुस्तानी।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: Akashvani at 90.
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म है जान।

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रही थी मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म थी जान।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की आवाजों में, फिल्म है बरसात।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रही थी कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की आवाजों में। फिल्म थी बरसात। इसके साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। शाम की 5:30 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम धीणेरी बाता हमारी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें।
1: काकी साहब, छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, आज मुंडा उतार किया बैठे हो।
2: काई करूँ दाबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और बीरो जीसोरो भी कौन।
1: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे भी बातिया। काकी साहब, कार्यक्रम सुन सु मिल पशुपालन से जुड़ी हो रही सभी समस्या का समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजक है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बातिया, धीनेरी बातें कार्यक्रम सुनने वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
5: बंशी भाई रा
4: मोकला मोकला
5: राम राम
4: राम राम भाई बंशी भाई राम राम
5: राम राम हरखू भाई राम राम।
4: देखो सिंजा पड़ी री बेला है और लठ हाथ में लेवड़ो और गमछो कांधे पर टांगेड़ो लगे कठी घूम रहे हो।
5: थे तो हरखू भाई सारी बात जानो
4: जानो क्यों माथे पसीनो।

0: फकरी है, पूछ रिया हो बार बार है, कई बात है।
1: देखो सा सुबेरी बेड़ा और संजेरी बेड़ा,
0: हाँ
1: यानी बी टाइम आदमी ने थोड़ा टहलना चाहिए ताकि उन्हें सु कही है कि शरीर है जो निरोग रहे।
0: बिल्कुल सा, देखो जे सुबेरी बेड़ा है तो भी आपने घूमना चाहिए और साथ साथ जिका भी आपा हड़का फुलका व्यायाम है, योग है, वो भी आपा कर लेवा तो शरीर ने अपरा निरोगो रहे।
1: इन वास्तरी क्या करे कि भाई जिको करे योग,
0: हाँ
1: उनरो शरीर रहे निरोग।
0: निरोग बिल्कुल सा, देखो सुबह उठते ही साथे कहीं है आपा देखो तैयार हो जावा और अनुलोम विलोम बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है, अगर बिना भी आपा कर लेवानी तो भी आप निरोग रहे हो सा। और आप अगर घर से बाहर निकल दो तीन किलोमीटर घूम ले हो तो और ही सोने में सुहागेरी बात है सा।
1: भाई जितो करो नहीं अपना शरीर ने दूरो,
0: हाँ
1: भाई काम शु करो एक तो,
0: हाँ
1: और एक अपना अगर योग रे माध्यम से वो जो दूरो को नहीं रहना हो,
0: हाँ
1: वो उल्टेरो जो कहीं है कि शरीर ने सोरो रखने रो योग।
0: हाँ तो देखो आपने जीवन रे माने एक आदत डालनी है कि आपने सुबह और सिंजारी बेड़ा घूमने रो जो बखत है वो निकालना है और हल्का फुल्का जिका व्यायाम है वे करना है। जे आप कोई रोग विशेष से जुड़ेड़ा हो तो आप जिका भी विशेषज्ञ है बी सलाह ले पर आपने योग करना है।
1: हाँ, कुल मिलार बात आई है कि शरीर जो है नहीं उन्होंने कोई ना कोई काम रमाने लगाड़ो रखो।
0: हाँ देखो शरीर सु पसीनो निकलना चाहिए और पसीने में मेहनत छुपेड़ी है
1: और मेहनत से ही देखो सा मिले धन।
0: हाँ, बिल्कुल सा, तो बताओ योग रे साथ है कि आज आप चर्चा किन विषय पर कर सा।
1: लोग कागज तो घनकरा लिखे है, कोई लिखे है कि भाई और रानी खेत रोग कहीं हुए उन बाबत जानकारी दो और एक फाउल पॉक्स चेचक रोग
0: देखो बर्ड फ्लू रे बारे में आयो है।
1: अच्छा
0: राम जी लिखी है मुर्गिया में होने वाला रोग,
1: मुर्गिया रा प्रमुख रोग अरे रोक थाम रा उपाय।
0: वाह वाह ठीक रस्तो बताया आज विशेषज्ञ जी का पता
1: हाँ।
0: नाम आपने बता दू पर चौपाल में पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे हैं सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी आप रो चौपाल में घणो घणो स्वागत है आपने में करा।
1: राम राम सा।
2: राम राम अरकू भाई, राम राम बंसी भाई।
1: देखो सा आपा कर सा डॉक्टर साहब सु प्रसन्न और डॉक्टर साहब जब जवाब देसी नहीं अपना जगह पशुपालक भाई नहीं बे होसी प्रसन्न।
0: बिल्कुल
1: आभार पूछू सा। तो सेऊ पहली डॉक्टर साहब मारा पशुपालक ने आप आ बताओ कि मुर्गियां माए होने वाला प्रमुख रोग है वे किसे किसा होया करे।
2: हाँ बंसी भाई, प्रमुख रोग अपने मुर्गिया में मेनली तीन कारक हुआ करे, चाहे मुर्गिया हो पशु हो पक्षी हो, क्या तो वायरस हुए क्या बैक्टीरिया हुए क्या प्रोटोजोआ पेरासाइट हुए
1: जी।
2: तो वायरस होने वाली मेन पहले मैं बताऊं आपने बीमारियां, सबसे बड़ी बीमारी बर्ड फ्लू जो पूरो वर्ल्ड पूरो राजस्थान ही नहीं भारत ही नहीं पूरा विश्व त्रसित है। बर्ड फ्लू ला रहे दो चार बार हुआ तो लाखों लाखों की संख्या में अपने मुर्गियां मारनी पड़ी ताकि मनुष्य में वो रोग नहीं पहुंचे
1: जी।
2: दूसरों रानी खेत डिजीज है वो भी बहुत खतरनाक छूतरी बीमारी, तीसरो फाउल पॉक्स है, चौथो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है जो अपने बार ला रहे कोरोना बीमारी हुई।
0: हाँ।
2: सेम बिसेर बारी बार बीमारी है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस कहवे बा मुर्गिया में हो जावे। चौथी मर्क्स डिजीज आपने कैंसर हुए मनुष्य आदमिया में बस सेम ट्यूमर हो जावे मर्क्स डिजीज में। पांचवी गंबोरो डिजीज है, लीची रोग है, ये सब वायरस होने वाला है। दूसरा बैक्टीरिया में होने वाला रोग है इन्फेक्शियस कोराइजा है, फाउल कोलेरा है जो हुए आपने जी हाँ फाउल कोलेरा हुआ है, पुलोरम डिजीज है, ई कोलाई है, फाउल टाइफाइड है अपने टाइफाइड हुआ जी यहाँ रे भी टाइफाइड हुआ है। तो ये सब जीवाणुओं बैक्टीरियाओं होने वाला बीमारियां हैं
1: जी।
2: तीसरी परजीवों पेरासाइट जो चीचड़ है, टिक है, माइट है, कोक्सीडियोसिस है, एस्परजिलोसिस है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये सब प्रोटोजोआ या पेरासाइटों होने वाली ये प्रमुख बीमारियां मुर्गिया में हुए।
0: वाह सर बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आप, घनखरा रोग बताए पर आज आप कुछ मुख्य मुख्य रोग पर चर्चा कर सा। तो सेहू पहला डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहूंगा कि रानी खेत रोग का कारण लक्षण रोकथाम रा उपाय कही है, इन विषय पर थोड़ी जानकारी दो सा।
2: रानी खेत डिजीज, अगर रानी खेत नाम ही वास्ते पड़े होगी, रानी खेत एक जगह है उत्तराखंड में, तो सब पहले बठे भारत में डिजीज आई आ बीमारी आई
1: अच्छा।
2: जीरो नाम रानी खेत भी जगह रे हिसाब रानी खेत डिजीज नाम पड़ियो। दूसरो नाम ये बीमारी रो न्यू केसल डिजीज भी कहवा, न्यू केसल एक जगह है इंग्लैंड में
1: अच्छा।
2: तो भारत में रानी खेत में आई लेकिन सब पहले महामारी रे रूप बठे न्यू केसल में आई, तो इन्हें दूसरो नाम न्यू केसल डिजीज भी रे हिसाब आप राखोड़ो है। तो इमें कहीं है कि सब उम्र री मुर्गिया में हो सके, छोटा चूजाऊं लेर बूढ़ी भी मुर्गी तक आ बीमारी हो सके, टर्की में भी वितरण समान रूप हुए। ये रोग कारक के एक मिक्सो वायरस हुआ करे, भी वायरस री

0: वजों आऊ है। ई में ईरा मेन लक्षण आ चार तरह री हुए। पहलो विरुलेंट फार्म है, दूसरो मिसोजेनिक फार्म है, तीसरो लेंटोजेनिक फार्म है और चौथो एसिम्टोमेटिक। तो पहलो विरुलेंट फार्म इन एशियन टाइप रानी के डिजीज भी कहवे, आ बहुत खतरनाक है। इमें 100% 100% मृत्यु निश्चित है, इमें मरे ही मरे मुर्गी। और आ 3-4 दिन तक रहवे और बीर बाद में कदे कदे एक ही दिन में सगली मुर्गिया मर जावे। इमें लक्षण तेज बुखार हुए और मुर्गिया ने सांस लेने में बड़ी तकलीफ हुए, मुंह खोलर मुर्गिया भी में सांस लेने की कोशिश करे और अंडा उत्पादन सब भी में कम हो जावे। दूसरी है मिसोजेनिक फार्म, बीन अमेरिकन टाइप किया करे, बी में मृत्यु थोड़ी कम हुए, कम खतरनाक है, 5-20% तक ही मृत्यु हुए, सांस लेने में कठिनाई हुए, हरिया रंगरा बी में दस्त हुए तो अंडा उत्पादन में कमी, तो बात ठीक हो सके, 10-20% तक भी मृत्यु हुए, 80% मुर्गियां भी में ठीक हो जावे। तीसरी है लेंटोजेनिक, इमें मृत्यु दर बहुत कम है, वो श्वास लेने में थोड़ी तकलीफ हुए लेकिन अंडा उत्पादन में भी कमी हुए लेकिन वह ठीक हो जावे। चौथी एसिम्टोमेटिक, भी लक्षण दिखे कोनी।
1: अच्छा।
0: पर बड़ी मजेदार बात है कि इमें लक्षण कौन दिखे पर मुर्गी उल्टी चलन लाग जावे।
1: अच्छा।
0: तो भी अपन ठा पड़े के ओ रानी खेतरो लेंटोजेनिक है,
1: रोग है,
0: एसिम्टोमेटिक, सिम्टम कोने आ रहा है, इमें भी में खांसी आवे, उल्टी आवे, पर मुर्गी उल्टी चालन लाग जावे तो आपने ठा पड़ जावे आ बीमारी, कदे कदे बट टांगे ने बीच में माथो देर भी बैठ जावे, तो यूं आपने ठा पड़े कि यह एसिम्टोमेटिक रानी खेत डिजीज है। तो ई रोग रो कोई उपचार नहीं है, जो मेन जो विरुलेंट फॉर्म में बतायो एशियन टाइप भी रो कोई उपचार नहीं है, बाकी तीनों फॉर्म रो थोड़ा उपचार है, ठीक हो जावे। वैक्सीनेशन इमें जरूर कराना चाहिए, ब्रॉयलर और लेयर में तो 7वें दिन पर जन्मे जीव, 7वें दिन पर, 28वें दिन पर और 10 सप्ताह पर,
1: अच्छा,
0: 3 बार वैक्सीनेशन कराना जरूरी है और ब्रॉयलर में सिर्फ 7 दिन पर वैक्सीन करा दो, वो भी काम चल जाओ।
1: तो डॉक्टर साहब मैं उम्मीद करा कि भी आपनी जी की जानकारी आप दी उनासु आपना जगह पशुपालक भाई है वे लाभ उठा सी। अब बात करा डॉक्टर साहब, एक रोग आप बतायो बर्ड फ्लू, जिके सु देखो साहब भारत ही नहीं पूरा जो विश्व है वो भी कहीं है कि इनसु प्रभावित हुए परेशान हुए। आप बताओ कि इन बर्ड फ्लू रोग रा लक्षण कारण और उनका रोकथाम रा कई उपाय।
0: जी, बर्ड फ्लू भी एक वायरस होने वाली बीमारी है, इन्फ्लुएंजा वायरस, आपने कोविड में भी इन्फ्लुएंजा वायरस ही हो, इमें इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है, भी वो बर्ड फ्लू बीमारी फैले, अभी बहुत खतरनाक, बहुत ही संक्रामक बीमारी है और इमें भी जी रानी खेतों बताई 100% मृत्यु निश्चित, इरो कोई उपचार नहीं है, इमें मुर्गिया ने मार खड्डे में या कोई सुरक्षित रूप में निस्तारित करनी पड़े। और रोग मुर्गिया में और टर्की में मुख्य रूप हुए। ई रोग रा लक्षण है कि अचानक ही खूब संख्या में एक ही दिन में एक ही दम ही मुर्गियां मरनी शुरू हो जावे, अपन समझ नहीं आवे यार एक ही दम ही मुर्गियां क्या मरी, पहले कोई लक्षण दिखे को नहीं, एक ही दम ही मुर्गियां मरनी शुरू हो जावे, पक्षी सुस्त और बिल्कुल खानो पीनो बंद करे और मरना शुरू, तो आ स्थिति फार्म में हो जावे। बर्ड फ्लू रो पक्षी में कहीं सूजन भी आ जावे, जुकाम हो जावे, नाक आंख आमू सब वो इस तरह शुरू हो जावे, तो ये सब लक्षण इमो हो जावे, इरो उपचार को नहीं बिल्कुल भी और मरना शुरू हो जावे, तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वैक्सीनेशन इरो उपचार है, वैक्सीनेशन आपने 7-10 दिन में करवाना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेर,
2: बिल्कुल नुकसान है वैसा। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे और जानना चाहूँ हाँ कि गंबोरो रोग कई है और इरा उपचार और बचाव क्या कर सका।
0: गंबोरो रोग इरे साइंटिस्ट है एक, बारो नाम हो जूलियन गंबोरो, वे ई रोग ने शुरू शुरू में स्टार्टिंग में खोज करी, तो बारे नाम वो गंबोरो रोग नाम पड़ियो, तो मैं साइंटिस्ट री वजहूं ई बीमारी रो नाम गंबोरो। आ भयंकर छूतदार बीमारी है, एक मुर्गी दूसरी मुर्गी में, दूसरी तीसरी में और चूजा में ज्यादा हुए, छोटी उम्र में सामने 2 सप्ताह लेर 15 सप्ताह री उम्र में वो रोग हुए और 3 सप्ताह लेर 7वें सप्ताह में लक्षण बहुत तेजी हुआ हुआ है, में 3-6 सप्ताह की आयु में इमें एकदम रोग लक्षण जो हुए वे तेजी में प्रकट हुआ, इमें पक्षी सुस्त हो जावे, भूख री कमी हो जाए, भूख प्यास कम लागे, मारो उत्पादन कम हो जावे, पानी री कमी हो जावे शरीर में, ऐसा लक्षण पंख इमें गंबोरों में पंख बीरा अव्यवस्थित हो जावे थोड़ा,
1: अच्छा,
0: पंख उड़ने में चालने में बीरा बड़ी तकलीफ हो, पगा में लकवा जैसी स्थिति भी आ जावे, तो थे आप पशु चिकित्सक ने जाओ या राजूवास आपने नंबर है टोल फ्री बठे बात करो, इरो इलाज है, पोल्ट्री फार्म भी राजूवास रो है बठे भी आप संपर्क कर सके किसान भाई, तो इरो इलाज है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, 4 वैक्सीन इरे वास्ते है, पहली माइल्ड वैक्सीन है, कम लक्षण आवे तो माइल्ड, मतलब माइल्ड

0: वैक्सीन लागू हुआ है, इंटरमीडिएट वैक्सीन हुआ है, और इसके अलावा इन्वेजिव इंटरवेसिव हुआ है लेयर और ब्रॉयलर के लिए इन्वेजिव इंटरमीडिएट वैक्सीन, और चौथी हुआ हॉट स्ट्रेन वैक्सीन, जो अगर एरिया में आपने प्रोन हुआ है, कई एरिया ये बीमारी के वास्ते प्रोन हुआ है, तो भी मैं हॉट स्ट्रेन वैक्सीन जरूरी हुआ है, चार तरह की वैक्सीन कर इरो बचाव कर सका।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया तरीके से समझावे नहीं, तो सवाल भी आपने बढ़िया बढ़िया दिमाग रमाने आ जावे। तो अगलो सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, हो है कि फाउल पॉक्स या चेचक रोग रा लक्षण कई होया करे, और इन बाबत टीकाकरण की कई भूमिका हो, इन बाबत भी जानकारी दो सा।
0: जी हाँ, चेचक आप नाम बताओ, पॉक्स, पॉक्स वायरस हूँ, वायरस नाम में ही आ रही होगी, पॉक्स तो पॉक्स वायरस है, चेचक जी में छोटी छोटी पुणसियां, जब मनुष्य में चेचक हुआ तो फुणसियां हो जाए, जो इनमें मुर्गी में छोटी छोटी फुणसियां हो जावे जगह जगह पूरे शरीर पर, कलंगी पर, गलकंबल पर, आखिरी पुतलिया माथे और सिर माथे फुणसियां हो जावे, तो वही मेन लक्षण है कि फुणसियां अगर आपने दिखे तो आप समझ जाओगे वो फाउल पॉक्स बीमारी है। इनमें संपर्क भी, एक मुर्गी दूसरे मुर्गी संपर्क में आवे तो भी वो एक दूसरे में फैले, मच्छर या पेरासाइट बारे पर जीवी आरी वजह भी आ बीमारी हो जावे। तीन तरह री हुए, चर्म रूप मतलब चमड़ी में फैलना, अच्छा। दूसरी हुए मुख रूप, और तीसरी हुए आंखियां रूप। चर्म रूप में कई हुए कि इमें कलंगी, कलंगी माथे, चेहरे माथे और गर्दन माथे ए फुंसियां, चेचकरी, चेचकरा दाग हो जावे, गल कंबल पर, गुदा पर भी हो जावे, तो यहां में हल्का भूरा रंगरा दाना नजर आवे, तो बन देख रहे धीरे धीरे पीला रंगरा, एक दो दिन में पीला रंग में बदल जा, भी वहां पर पहचान हो जावे। दूसरो वह मुख रूप, इमें मुंह रे अंदर झिल्ली अंदर गला तक छला और दाना हो जावे, तो वो मुख रूप हुआ इरो चेचक रो, फाउल पॉक्स रो। तीसरो वह आंख रूप, इमें आंखियां पलकाउर स्त्राव शुरू हो जावे, सफेद मवाद भी कई बार निकलन लाग जावे,
1: अच्छा,
0: तो वो इरो तीसरो रूप है आंख रूप। ओवरऑल अंडा उत्पादन, तीनों ही रूपों में अंडा उत्पादन में कमी आ जावे, आहार प्रति रुचि पक्षीरी कौन रहे, ताप टेम्परेचर भी रोपट जा, बुखार टाइप हो जा, और उग्र रूप हो जावे, तो पक्षी मरना भी शुरू हो जावे। इमें भी रोग रो बचाव ही उपाय है, ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीनेशन, बीमारी होने पहले वैक्सीनेशन आपने करना होना चाहिए, छह आठ सप्ताह की उम्र में इरो वैक्सीन लगे, वो डॉक्टर साहब संपर्क कर और वैक्सीन लगवानी चाहिए।
2: बिल्कुल साहब, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, और अब जो वक्त है बंसी भाई वो है गीतड़ ले रो।
1: बिल्कुल हरकू भाई
2: है? सुना दू
1: एकदम साहब,
2: आप से सुनो भैया, वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: तो भैया बार आप सुनियो भी एक मीठो मीठो सो गीत रड़लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धूड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इन बेला आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीणेरी बातें। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़। और आज आप बातचीत करिया मुर्गिया रा प्रमुख रोग रोकथामरा उपाय विषय पर।
2: डॉक्टर साहब क्या करे कि भाई जीवारी और पशुवारी सुरक्षा बहुत ही जरूरी हो या करे और मैं चाहे किण भी रूप वाले मायने हो या करे, बात करा जैव सुरक्षा री तो मुर्गिया माए जैव सुरक्षा रो काई महत्व है, इन बाबत आप जानकारी दे सर।
3: बायो सिक्योरिटी या जैव सुरक्षा बहुत जरूरी है। ई में आप सब पक्षियों रो स्वच्छता रो विशेष ध्यान रखना पड़े, नहीं तो कई तरह रा इन्फेक्शन चूहा अपने पोल्ट्री फार्म में नहीं घुसे, इसका भी विशेष रूप ईरो भी आपने विशेष रूप ध्यान रखना पड़ी, कोई तरह रो इन्फेक्शन नहीं आवे। अपने जब फार्म डालते हैं नया तो भी टाइम डालना, जब नया जब चूजा खरीद लावा जठों भी तो ईरो भी आपने ध्यान रखना पड़े कि जठों भी आपन ला रहा वो 3 महीना तक या 4-6 महीना तक बैठे कोई बीमारी नहीं आई हुआ, इसी जगहों ले रहा हुआ। अच्छा। जी वाहन में आ रहे हो वो वाहन भी साफ सुथरो हुए, तो ये सब चीजा ध्यान रखना पड़े। इमें अंदर घुसनों पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड और फुटबाथ वगैरह आप अंदर हैंडलर करना वाला वे मास्क वगैरह गम बूट वगैरह वे पैर जावे, ये सब बहुत जरूरी है। तो आऊं बायो सिक्योरिटी जैव सुरक्षा आरी मुर्गी फार्म री जरूरी।
0: बिल्कुल सर, कुल मिलाकर साफ सफाई की जी भूमिका है वह महत्वपूर्ण है, और चाहे आवन जावन रो जो भी वाहन है वो हो, चाहे वह जठे भी पशु दड़बे में रहे बीदी। हाँ। भी साफ सफाई रो भी बहुत महत्व है।
3: बीरो बीरो लीटर जो आप नीचे बिछड़ो हुआ है बीरो भी बहुत ध्यान रखना हुआ है साफ सफाई रो। बिल्कुल।
0: पर अब एक डॉक्टर साहब आपसे मैं और पूछना चाहूंगा कि संतुलित आहार और साफ पानी मुर्गिया रोग

0: बचाउन में किन भांत सहायक रहे।
1: संतुलित आहार अपने न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट हमारे राजू आस में भी है और जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर्स है बहु बातचीत कर रही, जब भी आप फार्म डालो पशु फार्म तो वो पूरा प्रोटोकॉल है न्यूट्रिशन रो, चूजाऊ लेर जन्मू लेर और आगे जू जू उम्र बढ़े भी जू और ब्रॉयलर रो अंडा देवड़ी टाइम का ही आहार रहना चाहिए, क्लाइमेट रे हिसाब भी सर्दी गर्मी में थोड़ो बहुत बदलाव आहार में लानो चाहिए, बारिश रे टाइम में कहीं है बीमारियां रो वैक्सीन, तो वो सब जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है हमारे राजूवास विश्वविद्यालय में भी आप संपर्क कर सको और नियर जो नजदीक आप रहे पशु चिकित्सक है वहां भी संपर्क कर और एक प्रोटोकॉल रहे तहत ही आहार देवा, पेयजल भी बहुत सुरक्षित होना चाहिए, अन्यथा ये बीमारियां सकला पशु मुर्गियों आहार इंसाना मासी आदमी मासी बहुत खतरनाक रूप भी ले लेवे कई बार, तो आहार और पेयजल रो बहुत संतुलित रूप में ध्यान रखना पड़े, ऑल आउट ऑल इन भी एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए, मुर्गिया ने एक साथ दो तीन महीना में एक साथ सारी मुर्गियां ने आपने बेच नयो लोट ले आना चाहिए, लंबे टाइम तक मुर्गियां नहीं रखना, थोड़ी थोड़ी कर बेचा एक टाइम एक साथ सब बेच दो, तो ऑल आउट ऑल इन नियम है और वापस लाना तीन सप्ताह तक खाली रखो, पहले सप्ताह में भी बीरो लीटर चेंज करो, दूसरे सप्ताह में बीरी दीवारा ये सब डिसइंफेक्टेंट साबुन डिटर्जेंट साफ करो, तीसरे सप्ताह में वहां पर कलर वलर कर, तीन सप्ताह बाद में पाछो दूसरो लीटर लाना चाहिए, तो ये सब भी ध्यान रखकर।
0: कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ऑल इन और ऑल आउट ई बात अगर आप ध्यान रखा फिर तीन सप्ताह अपने डॉक्टर साहब बताए, छोटी छोटी बातें हैं पर आप वास्ते बहुत ही महत्व बातें हैं और इन बातें अगर आप ध्यान रखा तो देखो आप जो इन्वेस्टमेंट क्यों पीसो जी को लगे नहीं बेरो आपने अच्छे भुगतान भी होता रहसी और नहीं जाने देखो बीमारी है बड़ी नुकसान दे हुआ करे
2: और इन नुकसान रो जो बचाव है वो उपचार है।
0: हाँ
2: है और इन वो क्या करें कि भाई उपचार जो है बचाव जो है वो कौन कर सके जो हो सजग।
0: हाँ
2: और सजग आदमी जिका करे सवाल।
0: हाँ
2: है तो देखो सर गौरव भाई है जो कागज में लिखकर भेजे सवाल
0: डॉक्टर साहब
2: गौरव भाई कहे कि भाई जे कोई मुर्गी माए रोग रा लक्षण दिख जावे तो मुर्गी पालक है उन्होंने किसा किसा काम है जगह तुरंत करना चाहिए जल्दी सु ताकि उन्होंने जगह मुर्गियां वे बचोड़ी जावे।
0: बढ़िया सवाल है,
1: बहुत बढ़िया सवाल है किसान भाई। इस सवाल रो एक मतलब इनिशियल जवाब हो दो कि आपने सब पहले तो जो नजदीकी डॉक्टर है बिकन तुरंत आप टेलीफोन नंबर रखो, अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हो तो आपने कह रहे फोन नंबर पशु चिकित्सक रहना चाहिए, तुरंत संपर्क करो, आप जो भी लक्षण दिख रहा है तुरंत माने बताओ और अगर वो डॉक्टर साहब बटे विजिट कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पक्षी ने पूरा प्रोटोकॉल साथ हमारे बटे ले जाओ दिखा दो लक्षण और जिया बताओ बिया आप ट्रीटमेंट लो, आप हिसाब में कोई ट्रीटमेंट नहीं देना, आप हिसाब में ट्रीटमेंट दे तो गड़बड़ आगे और फैल सके वह बीमारी, तो इसो काम नहीं करना, तो डॉक्टर साहब संपर्क कर और राजूवास टोल फ्री नंबर है 1880 62 24 वहां पर भी आप संपर्क कर सको और धीनेरी बातें टाइम टाइम देखता रहो तो वहां में भी काफी बातें आप बताऊं, तो ध्यान रखे पशु भाई पशुपालक भाई और मुर्गी पालक तो काफी राहत मिल सी।
2: तो डॉक्टर साहब एक सवाल और दिमाग रे मायने आवे कि टोल फ्री नंबर है उन्हारे मायने कोई रात बरात भी फोन कर सका की?
1: बिल्कुल भी तो 24/7 है।
2: अच्छा।
1: लेकिन रात में 9 बजे तक तो हमारे बैठे डॉक्टर भी उपलब्ध रहे।
2: अच्छा।
1: मेरे बाद में भी कोई इमरजेंसी है तो निश्चित रूप में आपने चाहे 12 बजे भी करनी पड़े तो जरूर आपने उपलब्ध रहे सी। 24/7 सेवा उपलब्ध है राजवासरी तरफ
0: घणकरा महाराज का पशुपालक भाई बहन काम में भी लेवे है। ठीक है सर। और अब एक चालती चालती बेला एक डॉक्टर साहब एक प्रश्न और है कि छोटा और मध्यम तबके रा मुर्गी पालका ने रोग नियंत्रण और रोकथाम रे बाबत आप कई संदेश देवना चाहो सा?
1: बिल्कुल साहब, छोटा मुर्गी पालक भी आपने बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म हुआ घर रहे पीछे बाड़ा में भी छोटा बड़ा रूप में नहीं कर सके, छोटा रूप में मुर्गी पालन करे तो बिहार इन्वेस्टमेंट आर्थिक रूप इतना सक्षम नहीं हुआ कि बहुत बड़ा स्तर पर करवा, तो माने वैक्सीनेशन रो जरूर ध्यान रखना चाहिए, पशु चिकित्सक आजकल सरकार फ्री वैक्सीनेशन भी कर रही है तो पशु चिकित्सालय में संपर्क कर और वैक्सीनेशन फ्री वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और बीरे अलावा भी अगर कोई बीमारी आ जावे तो तुरंत पशु चिकित्सकों संपर्क कर और जरूर पशु चिकित्सक होंगे वो आपको उपचार उपलब्ध कराएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, अगर स्वच्छता होगी खान पान उसका न्यूट्रिशन अभी आप पूछो पहले मैंने खान पान और पेयजल मारो स्वच्छ हो सी एकदम साफ सफाई रहसी और तरीका राखो तो बीमारी आप पर आवे ही नहीं तो इसो काम ही नहीं पड़े बीमारी रो वो आप ध्यान रखो।

0: छोटी छोटी बातें हैं, फिर बारिश करूं उसके खान पान है और स्वच्छता है। दूसरा ऐसा कि आपा समय समय पर टीकाकरण करा और समय समय पर आपा डॉक्टर साहब से राय लेता रहा तो आपा जो काम धंधा है वो अच्छो चाली और पशु भी आपा रहा है वह भी स्वस्थ रहसी। और अब जो भक्त है वो इशारों कर रहे है आज्ञा लेवण रो
1: और सुमेरी जी की कदर है और सम्मान है वो तो सगला ने करना ही चीज है।
0: बिल्कुल सर। तो भैया मैं आपने बता दूं आज आप बातचीत करी मुर्गिया रा प्रमुख रोग और रोकथाम रा उपाय इन विषय पर और आज आपने जानकारी देवन सर पधारिया राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब आप चौपाल में पधारिया हमारे पशुपालक ने बहुत बढ़िया जानकारी दी इन सर मैं आपने देवा धन्यवाद और करा
1: राम राम सा
2: राम राम सर।
0: तो आप ही आकाशवाणी बीकानेर रे ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ढेणेरी बातिया कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती बरखा थानवी व्यास की सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। तो सा हमें महने आज्ञा दिराओ सा घणान घणा राम राम सा।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं पर आज मुन्ना उतार किया बैठे हो।
5: काहे करूं दाबू बेटा भैंस को दूध भी कौन दियो और विरोध जिसोरो भी कौन।
4: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी साहब कार्यक्रम सुनने सुनने सी पशुपालन से जुड़ी हो रही समस्या का समाधान।
6: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें।

ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम की 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप जानते हो ना?

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: विविधा कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता। विषय है बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग का महत्व। बातचीत कर रहे हैं देवराज सिंह भाटी से श्री सीताराम महावर।
5: साथियों, इस समय अपने साथ हैं देवराज सिंह भाटी, जो कि योग विशेषज्ञ हैं, और आज इनसे जानकारी लेते हैं बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग का महत्व। देवराज सिंह जी, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
6: नमस्कार
5: देवराज सिंह जी। सबसे पहले तो यही जानकारी चाहते हैं कि योग किस तरह से हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है।
6: योग एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। जिस तरह से अपने जीवन में खाना पीना रहना लाइफस्टाइल का जो पार्ट है, उसी तरह योग भी एक जीवन शैली है।
5: किस तरह से हमारा जीवन बेहतर हो सकता है यदि हम योग के साथ अपना जुड़ाव करते हैं? तो
6: जैसे कि अपन अभी आजकल देख रहे हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, छोटे बड़े सभी जो है शारीरिक और मानसिक रूप से, स्पिरिचुअल हो गया, सामाजिक रूप से जो भी जिंदगी में जो चल रहा होता है, उनके निवारण के लिए अपन योग कर सकते हैं।
5: आज हमारी बातचीत का विषय है बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग का महत्व। बच्चे चाहते हैं कि उनकी शारीरिक वृद्धि अच्छी हो, मानसिक विकास अच्छा हो। पहले बताएं कि शारीरिक विकास में बच्चों को कैसे मददगार ये हो सकता है?
6: जैसे अभी आजकल अपन देख रहे हैं कि बच्चे ना फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम हो गई है, जैसे वो अपने मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, गेम्स खेलना कम एज से ही चलना, तो उनका जो फिजिकल विकास है, जो उन बॉडी का मूवमेंट चाहिए, वो उसमें हो नहीं पाता है, और उनका मेंटली डेवलपमेंट भी जो है रुक जाता है। तो अपन योग के थ्रू उनका फिजिकल बैलेंस कर सकते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर सकते हैं, उनकी मेंटल पे काम कर सकते हैं, पढ़ाई में उनके काम आ सकता है, उनकी मेमोरी लॉस जो होता है, उनको याद नहीं रहता है, उसके लिए योग बहुत जरूरी है।
5: देवराज सिंह जी, शारीरिक विकास के लिए कौन कौन से योगासन या प्राणायाम या दोनों ही उपयोगी हो सकते हैं बढ़ते हुए बच्चों के लिए?
6: जैसे आसन की अपन बात करें तो ताड़ासन एक आसन है, जिससे बच्चों की अगर ग्रोथ रुकी हुई है, स्पाइन स्ट्रेट नहीं रहती है, पूरे दिन अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो बैठे रह रहे हैं, तो उनके स्पाइन के लिए, उनके शोल्डर के लिए, पूरे हाइट बढ़ाने के लिए उसमें ताड़ासन एक आसन है, वो कर सकते हैं। वृक्षासन उनके बैलेंस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, जब वृक्षासन आसन करते हैं तो उनका बैलेंस उसमें चाहिए होता है, तो वृक्षासन हो गया। पश्चिमोत्तानासन हो गया, एक सिटिंग आसन है जिसमें फॉरवर्ड बेंड होता है, तो वो आसन कर सकते हैं। चक्रासन हो गया, ये आसन करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और ये बढ़ सकती है।
5: और प्राणायाम की बात करें तो
6: प्राणायाम में जैसे भ्रामरी हो गया, उज्जायी हो गया, अनुलोम विलोम ब्रीदिंग है, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, वो कर सकते हैं बच्चे।
5: अच्छा, कैसे बच्चों की पढ़ाई में सहायता कर सकता है योग?
6: उनके लिए आसन भी हो गए, प्राणायाम भी हो गया, और 5 मिनट एक जगह बैठ के वो लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, एकाग्रचित होके, तो उनका फोकस भी बढ़ेगा और याद भी रहेगा। तो वो डायरेक्टली तो पढ़ाई में फ़ायदा नहीं होगा, और इनडायरेक्टली जो उनका जो कंसंट्रेशन और एक प्रैक्टिस जो करेंगे, उससे उनकी पढ़ाई में, मार्क्स में और एग्जाम में उनका फ़ायदा होने वाला है।
5: कुछ विशेष तरह के योगासन प्राणायाम इसके लिए किए जा सकते हैं?
6: जी बिल्कुल, इसके लिए जैसे ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया, चक्रासन हो गया, और भी जैसे आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले आसन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार, जिससे पूरा बॉडी का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें फॉरवर्ड भी आ गया, फॉरवर्ड बेंड भी होता है, बैक बेंड भी होता है, तो उसमें पूरे शरीर का विकास हो जाता है।

0: तो सूर्य नमस्कार भी बच्चा कर सकता है। इसके अलावा जब प्राणायाम में जाते हैं तो प्राणायाम में ब्राह्मरी हो गया, उज्जयी हो गया, अनुलोम विलोम हो गया ये, और 5 मिनट बच्चा अगर एक जगह बैठ के अपने ब्रीथ पर फोकस करके कॉन्सेंट्रेशन करे तो उससे भी उसका डेवलपमेंट हो सकता है।
1: यदि किसी व्यक्ति की आयु 100 साल हम मान लेते हैं, शुरुआती दौर के वर्षों में जब वह किशोर होता है बच्चा, उस दौर में यदि योगी के साथ में उसका जुड़ाव होता है, क्या हमारा जीवन अंतिम अवस्था तक बेहतर हो सकता है?
0: जी बिल्कुल, यदि अगर कोई भी बच्चा है, बड़ा भी है, 20 साल 25 साल के बाद में भी अगर वो जुड़ रहा है, अगर वो योग के द्वारा फिजिकली एक्टिव है, मेंटली एक्टिव है, तो वो बाद में भी उसकी आयु में डिफरेंस नज़र आता है। जैसे कि उनका पोस्चर जो है, स्पाइन स्ट्रेट रहना, बोन्स मजबूत रहना, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रहना, जो स्ट्रेंथ जो होती है उनमें उनका असर नज़र आता है।
1: कई बच्चे अपने करियर का निर्धारण करते हैं, फौज में जाने के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट में जाने के लिए, अर्धसैनिक बलों में जाने के लिए, वहाँ पर शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। जो युवा अपना करियर इसमें बनाना चाहते हों, योग कैसे उनकी सहायता कर सकता है?
0: जैसे कि मैंने पहले बताया कि योग पूरा लाइफस्टाइल है। योग किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है, कुछ भी करना है, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, या फिर वो जाने भी वाला है, तो उनके लिए पूरा फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली सभी में वो सहयोग करने वाला है।
1: किस उम्र में योग के साथ में बच्चे को, युवा को जुड़ाव आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए योग के साथ?
0: बच्चे से लेके बड़े तक कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर स्टार्टिंग अपन एज की बात करें तो वो कम से कम 5 या 6 साल का होने के बाद वो योग से जुड़ सकता है। उसके बाद अगर वो कंटिन्यू जुड़ा हुआ है तो उनका जो डेवलपमेंट है वो स्पिरिचुअली उनके पढ़ाई में भी नजर आएगा, उनके शरीर में नजर आएगा, उनके मन में नजर आएगा, उनके बिहेवियर में नजर आएगा।
1: किस तरह से योग हमारा शारीरिक और मानसिक विकास करता है, ऐसा क्या हो जाता है कि हम स्वस्थ होते चले जाते हैं?
0: क्योंकि अपन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपन ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, होता है योग में षटकम प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी इंटरनली भी क्लीन करते हैं, तो अपन हेड से लेके पूरा अपन नोज, जो अपने अंदर जो टॉक्सिन्स जो जमा होते हैं उनको जब बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो भी करते हैं, तो अपन न केवल बाहरी बल्कि अंदर से भी पूरे फिट रहते हैं। तो अपने को बेली से रिलेटेड जितने भी डिजीज होने वाले हैं, श्वास से रिलेटेड जो डिजीज होने वाले हैं वो उनसे क्योर करता है। प्लस जैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं तो अपन मेंटली भी क्योर हो रहे हैं इस तरह से, तो अपन अगर मानसिक और शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ हैं तो जिंदगी में सफल होने वाले हैं।
1: क्योंकि बच्चे और बड़े सब चाहते हैं कि दिखने में वे अच्छे हों, उनका सौंदर्य थोड़ा सा और बढ़ जाए, योग वहाँ भी हमारी सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, जिस शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी अगर वो फिजिकली एक्टिव रहने वाला है तो उनके पोस्चर में उसका डिफरेंस नज़र आएगा, उनके शरीर में नज़र आएगा, उनकी स्ट्रेंथ रहने वाली है, उनकी बोन्स मजबूत रहने वाली है, तो इस तरह से ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट दिखेगी जो योगा कर रहा है और जो योगा नहीं कर रहा है उनके डिफरेंस में।
1: बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने में योग हमारी सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, जब हम एक आसन बेसिक से स्टार्ट करते हैं और इंटरमीडिएट और एडवांस तक जाते हैं, आसनों को ट्राई करते रहते हैं, तो कुछ आसन ऐसे आते हैं जो अपन प्रारंभिक स्टेज पर नहीं कर पाते लेकिन फिर बाद में अपने से वो होने लगते हैं, तो अपने को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ ये मेरे से पहले नहीं हो रहा था, अब मैंने ये कर लिया, तो व्यक्ति का खुद का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि यस प्रैक्टिस से अपन परफेक्ट हो सकते हैं। तो वो सेम चीज़ उनकी पढ़ाई में भी नज़र आती है, उनकी आगे के किसी भी काम में भी नज़र आती है।
1: एक विद्यार्थी, एक युवा के ऊपर पढ़ाई का, सफलता पाने का, परीक्षा का दबाव रहता है, तनाव में कई बार वे आ जाते हैं, वहाँ पर योग क्या हमारी सहायता कर सकता है?
0: अगर अपन योग से जुड़े हुए हैं, प्राणायाम करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, अपन शारीरिक रूप से फिट हैं, उसमें अपना मेंटल भी स्पिरिचुअल भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ तक ये टेंशन रहेगी ही नहीं, क्योंकि जब जुड़ा हुआ है वो पहले से ही ऑलरेडी कॉन्फिडेंट ही रहता है, तो उनको वो सब टेंशन भी नहीं रहेगी और वो जीवन में सफलता प्राप्त करेगा।
1: तनाव के दौर में बाहर आने के लिए क्या कोई योगासन प्राणायाम किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल, प्राणायाम भी कर सकते हैं और आसन भी कर सकते हैं। तो उसमें सूर्य नमस्कार भी हो गया,

0: और ओवरऑल पूरी बॉडी का स्ट्रेचिंग वार्म अप से लेके पूरा जो स्टेप्स होती है वो अपन सभी आसन, जैसे खड़े होने वाले हो गए, बैठ के करने वाले हो गए, सीधे लेट के, उल्टा लेट के, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस, सभी आसन प्लस प्राणायाम और 5 मिनट मेडिटेशन। तो धीरे धीरे मेडिटेशन 2 मिनट 5 मिनट से बढ़ा के अपन उसका टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं, तो ये उनको तनाव प्रबंधन में काम करता है।
1: कैसे कोई बालक युवक योग सीखना आरंभ करे?
0: जो भी योग सीखना चाहता है वो अगर किसी के गाइडेंस में अगर करेगा तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएगा, न कि वो सेल्फ करे, क्योंकि इसमें बॉडी अवेयरनेस भी का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसमें ब्रीदिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसमें बॉडी अलाइनमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर वो किसी के गाइडेंस में अगर करता है तो वो जल्दी भी सीखता है, प्लस उसको कुछ और जैसे कहीं भी पेन शुरू नहीं हो जाए, एक्स्ट्रा बेंडिंग नहीं हो जाए, एक्स्ट्रा फॉरवर्ड नहीं हो जाए, तो उसका भी ध्यान रखता है तो वो सही रहता है।
1: कई बार लोग इंटरनेट की सहायता से योग सीखने का प्रयास करते हैं, वो क्या हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेट में तो वही बता रखा है जो कॉमन पीपल के लिए बता रखा है, लेकिन अगर किसी को कुछ स्पेशली करना है, उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जिसके बैक पेन हो रखा है, किसी के हर्निया की प्रॉब्लम है, किसी के हाई बीपी है, किसी के शुगर है, तो उसमें इंटरनेट पे तो वही बता रखा है जो आसन रेगुलर पर्सन के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनमें उन्होंने वो भी कर लिए तो वो जो उनको गंभीर प्रॉब्लम्स है वो फिर से बढ़ सकती है या फिर और ज़्यादा हो सकती है।
1: कौन सा योग, कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम किया जाना चाहिए, यह व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार और उसकी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार होता है?
0: जी बिल्कुल, अपने को जो भी आसन होता है वो एक बेसिक से लेके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात कि किसी को उससे कंपैरिजन नहीं होता है। अगर वो क्लास में गया योग कर रहा है लेकिन किसी दूसरे को देखा जो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसने उसको देखा देखी में अगर बहुत ज़्यादा बेंडिंग कर लिया, फॉरवर्ड कर लिया, वो ट्राई कर लिया, तो उसको इंजरी भी हो सकती है। तो उसमें यही है कि व्यक्ति में धैर्य होना चाहिए, क्योंकि वो भी जब रेगुलर प्रैक्टिस करने लगेंगे तो उनमें भी वो क्षमता आ जाएगी कि वो भी आगे आसन कर पाएंगे। और रेगुलर प्रैक्टिस, धैर्य होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हो जाएगा। कुछ आसन ऐसे भी होते हैं जो होते आसान है लेकिन दिखने में कठिन होते हैं, तो वो पर्सन इसलिए भी नहीं करता है कि क्या पता मेरे कुछ हो नहीं जाए या मैं करूँ नहीं करूँ, तो वो निरंतर अभ्यास है तो वो कर लेगा।
1: सबसे अच्छा समय कौन सा माना गया है योग करने का?
0: नॉर्मली अपन मानते हैं कि योग सुबह ही करना चाहिए, लेकिन जब अपन टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं तो ऐसा कहीं नहीं है कि सुबह ही करना चाहिए। आपने जब भी खाना खाया है तो उसमें 4 से 5 घंटे का अगर गैप रख के आप कभी भी कर सकते हैं।
1: किस तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता रहती है जिस समय हम योग करें?
0: पूरा शरीर का वार्म अप होने के बाद ही कोई आसन ट्राई करें, जिससे कि अपन जो भी आसन करने वाले हैं वो अपने से अच्छे से हो जाए। अगर बिना वार्म अप के अपन आसन करने जाएंगे, जैसे योग में जो सूक्ष्म व्यायाम बताए गए हैं पूरे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं उनको पूरा एक बार वार्म अप हो जाए, स्थूल व्यायाम जो बताए गए हैं वो एक बार हो जाए, तो शरीर के जो आगे जो अपन आसनास करने वाले हैं वो अच्छे से कर पाएंगे।
1: क्या सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ती है योग के दौरान और योग समाप्ति के पश्चात?
0: सावधानियाँ धीरे धीरे करें, किसी से कंपैरिजन ना हो, बहुत ज़्यादा बेंडिंग भी ना हो, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड ना हो, अपने शरीर के अनुसार हो, खाली पेट होना ही चाहिए, प्रॉपर स्वच्छता होनी चाहिए, मैट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड जगह नहीं हो, स्वच्छ वातावरण हो, खुला मैदान हो तो ज़्यादा बेटर है, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। हाइड्रेशन के लिए अपन बीच बीच में थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिएं।
1: एक समय जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शरीर गर्म हो जाता है, उसे आराम की भी आवश्यकता पड़ती है?
0: यस, कोई सा भी आसन करा उसका काउंटर पोज होता है, तो रिवर्स आसन करने पे बॉडी को वैसे ही रिलैक्स मिल जाता है, तो वो बॉडी रिलैक्स हो जाता है। और उसके बाद भी अपन पूरे 45 मिनट्स 50 मिनट्स के बाद प्राणायाम करने वाले हैं, उसके बाद अपन शवासन में लेटने वाले हैं, तो उसमें बॉडी रिलैक्स हो जाती है।
1: अच्छा देवराज सिंह जी, हमारे जो बच्चों के माँ बाप हैं, कोई सलाह देनी हो ताकि उनके बच्चे योग को अपना सके, अपने जीवन का एक हिस्सा बना सके, कोई सलाह देनी हो क्या देना चाहेंगे?
0: बच्चों को योग से जोड़ना चाहिए, जैसे कि उनका एक तो फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। अगर कोई बच्चा अगर कोई दूसरा गेम भी खेल रहा है तो उन गेम के लिए भी आसन जरूरी है उनके लिए, तो बॉडी का विकास उससे भी जरूरी है, पढ़ाई में जरूरी है, उनके कॉन्सेंट्रेशन के लिए जरूरी है, मानसिक विकास के लिए जरूरी है, तो वो उनके पढ़ाई में भी काम आने वाला है, शरीर के लिए भी काम आने वाला है, बच्चा एक्टिव रहने वाला है, उनका फिजिकल और मेंटली दोनों ग्रोथ होने वाली है। तो बच्चों को अगर उनकी एज

0: पाँच साल छः साल है तो उनसे उनको स्टार्ट योगा करवा देना चाहिए।
1: योग को किसी भी रूप में यदि हम अपने जीवन में शामिल करते हैं, हमें शारीरिक और मानसिक लाभ ही प्राप्त होगा।
0: सिर्फ शारीरिक और मानसिक नहीं, अपने को सोशल लाभ भी मिलेगा, प्लस अपन स्पिरिचुअल लाभ भी मिलने वाला है, ओवरऑल पूरा अपना डेवलपमेंट होने वाला है।
1: देवराज सिंह जी, कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है, हमारे साथियों की ओर से आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे एक भेंट वार्ता, विषय था बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग का महत्व। बातचीत कर रहे थे देवराज सिंह भाटी से श्री सीताराम महावर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, FM बैंड 102.9 MHz पर।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, भाग संख्या 222।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

अभी आप सुन रही थी श्री रामचरित मानस गान, भाग संख्या थी 222। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। शाम की 6:30 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके तुरंत पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉयड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।

0: मुख्य समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और आरपीएससी ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस प्रोत्साहन वितरण से 15 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगारों को समर्थन मिलने की संभावना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। आज जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 स्थानों पर होंगे।
1: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
0: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, साथ ही खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण ने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता को मजबूत किया है। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में करीब 98% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक से अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान करने में मदद मिली है। वहीं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल ने देश भर में प्रवासी लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।
2: हमने वन रेशन कार्ड जो गरीब बड़े बड़े शहरों में जाते थे उसको राशन नहीं मिलता था, उसका भी इंतजाम इससे हुआ है। तो रिसेंट हमारा जो है सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड द फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप ऑफ दी को टेक्नोलॉजी उपयोग करके, डिजिटाइजेशन उपयोग करके नेक्स्ट लेवल का एक बदलाव है।
0: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस वर्ष की हज यात्रा को सफलतम बताया है। श्री रिजिजू ने आज नई दिल्ली में अगले साल की हज यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस बार भारत को हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जल्दी ही 2027 की हज यात्रा के लिए नई नीति की घोषणा करेगी। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत इन सड़कों के लिए 18,900

0: करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अगुवाई में हुई बैठक में राजस्थान सहित 6 राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में सभी तेल शोधन संयंत्रों में कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार हैं और ये संयंत्र उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले 3 दिनों में 1,47,00,000 LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख PNG कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी दी है। इन खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किया जाएगा। इस निर्णय से युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने और प्रदेश में खेलों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18,86,00,000 रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। इस राशि से मंडी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का विकास और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। इससे सोजत, पलसाना, श्रीमाधोपुर, बीकानेर, नागौर और दूदू कृषि उपज मंडियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिससे कृषि विपणन गतिविधियों को हवा मिलेगा। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय पर आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि विभाग की ओर से डीडवाना में हुई वर्कशॉप में PHED और जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किसानों से कुल कृषि भूमि के कम से कम 10% हिस्से में प्राकृतिक खेती शुरू करने को कहा, जिसे भविष्य में व्यापक स्तर पर विस्तार दिया जा सके। उधर नागौर में आयोजित कार्यशाला में किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी संभव है। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना की उच्चाधिकार समिति की आज जयपुर में बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने परियोजना के तहत अधिकारियों को ग्रीन कवर बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण और चारागाह विकास कार्यों में स्थानीय तथा क्षेत्र विशेष के अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव ने जल संरक्षण और जल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने आज आयोग मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पिछले 1 साल में आयोग द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और तकनीकी नवाचारों की जानकारी दी। श्री साहू ने कहा कि आयोग ने परीक्षा प्रणाली की शुचिता और समयबद्धता बनाए रखने के विशेष प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि 1 साल में 47,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया गया और 10,000 की चयन अनुशंसा संबंधित विभागों को भेजी गई।
2: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 DPC की बैठकें हुई है 1 साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस DPC के माध्यम से मिला है।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों को नीट UG 2026 परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने का आश्वासन दिया है। एजेंसी

0: सी ने कहा है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल और अनुचित गतिविधि के प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। एनटीए ने अपने संदेश में कहा है कि परीक्षा में केवल 3 दिन शेष है, उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर भरोसा रखते हुए परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 144-16 से मदद ली जा सकती है। एजेंसी ने अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जनता को अफवाहों पर विश्वास नहीं करने और अपुष्ट जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों और पार्कों तथा खेल मैदान में बड़ी संख्या में लोग सामूहिक योगासन करते नजर आ रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरएसी जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। उधर उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने भी आज जयपुर में अपने आवासीय परिसर में परिजन और सहायकों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर श्री बैरवा ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे स्वस्थ जीवन शैली का स्थायी आधार बनाया जाना चाहिए। वहीं राजस्थान विधानसभा परिसर में कल सुबह सामूहिक योग कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अगुवाई में ये कार्यक्रम होगा। सिख धर्म के 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। त्याग और सेवा के प्रतीक गुरु अर्जन देव को शहीदों का सरताज भी कहा जाता है। इस मौके पर गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए हैं और गुरबाणी तथा शब्द कीर्तन के आयोजन रखे गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों की जल सेवा भी की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98.5% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और आरपीएससी ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशी लाल ने तैयार किया है। बालोतरा जिले में राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से सरकार के 22 विभागों की सेवाएं आम जन तक पहुँच रही हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को उनसे जोड़ा जा रहा है। वर्षों से लंबित कई कार्य एक ही स्थान पर पूरे किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव इन शिविरों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। वे गाँवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। जिले के सभी स्थानीय निकायों में शहरी सेवा शिविर भी लगाए गए हैं। जिले के 8 नगरीय निकायों में नियमित रूप से शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टों का वितरण किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा पेंशन प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिले में परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण और जल संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विभिन्न तालाबों, जल स्रोतों पर श्रमदान किया गया तथा पूजन के कार्यक्रम हुए। रेवाड़ा तालाब पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री के विश्नोई ने भाग लिया। उन्होंने लोगों को जल संरक्षण का महत्व बताया और जल बचाने की शपथ दिलाई। जल ग्रहण विकास और भूमि संरक्षण विभाग की ओर से भी कई ग्राम पंचायतों में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीणों को वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों की सफाई के महत्व के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर पूजा अर्चना की गई। बालोतरा

0: प्राचीन खेड़ मंदिर में भगवान रणछोड़ राय की पूजा की गई। वहीं गुड़ामालानी के स्वामी नारायण मंदिर में राज्य मंत्री के विश्नोई ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। वहीं जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से पंचायत समिति परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन को दी गई। जिले में बदलते कृषि परिदृश्य और भूमि की घटती उर्वरता को देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति परिसर बालूतरा में कार्यशाला रखी गई। कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में किसानों को रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कृषि पद्धतियों के बारे में बताया गया। किसानों को प्राकृतिक खाद और जैविक तरीकों के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। इस वर्ष अधिक मास होने के कारण पूरे महीने जिले में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर नगर परिक्रमा निकाली गई। लोगों ने पूजा अर्चना और दान पुण्य के कार्यक्रमों में भाग लिया। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा की कामना की। पचपदरा रिफाइनरी को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह बना हुआ है। कुछ समय पहले एक यूनिट में आग लगने के कारण काम प्रभावित हुआ था, लेकिन अब फिर से कमिश्निंग का काम शुरू हो गया है। जुलाई के पहले सप्ताह तक रिफाइनरी के शुभारंभ की संभावना जताई जा रही है। रिफाइनरी से क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न स्थानों पर योग शिविर और योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह के समय बड़ी संख्या में लोग योग कर रहे हैं। जिले में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी और हल्की बारिश हुई है। इससे गर्मी और लू से लोगों को राहत मिली है। तापमान में कमी आने के बाद किसान खेतों की ओर लौटने लगे हैं। खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसान खेतों की सफाई कर रहे हैं और अनावश्यक पौधों को हटाने का काम कर रहे हैं। मॉनसून की बारिश से पहले खेतों को तैयार किया जा रहा है, ताकि समय पर जुताई और बुआई का काम शुरू किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियां फिर से तेज होने लगी हैं और किसान आगामी मौसम की तैयारियों में जुट गए हैं। बालूतरा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली माए देश माए 200 क्षेत्रीय कार्यक्रम भैला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98% अन्न वितरण ई पीओएस मशीनों करियो चार्यो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तर री होड़ा माए तमगा जीतन वाला 50 खिलाड़िया ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी री मंजूरी दीनी। और आरपीएससी लारला एक साल माए 47 लाख हूं बत्ता उम्मीदवारा सारू 187 बत्ती परीक्षावा कराई। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत काल करीब 2400 करोड़ रुपया री प्रोत्साहन राशि पात्र लोगों ने देवेला। इणु नौकरी धंधा रा 15 लाख बत्ता मौका मिलेला। श्रम और रोजगार मंत्रालय री ओर ओ कार्यक्रम नई दिल्ली माए राख्यो जावेला, जदका देश भर माए 200 क्षेत्रीय कार्यक्रम वेला। अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार बतायो कि राज्य में यह कार्यक्रम जयपुर समेत 7 रखा जावेला।
2: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
1: केंद्रीय उपभोक्ता मामलात खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी कहो है कि खाद्य सुरक्षा तय करण सारू खेतीबाड़ी

0: ਰੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣੋ ਔਰ ਅੰਨ ਨ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਾਗਰ ਭੇੜੋ ਕਰਨੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਏ ਭਾਰਤੀਯ ਖਾਦਯ ਨਿਗਮ ਰਾ ਸਮਾਰਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਲਸਾ ਮਾਏ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾ। ਵਹ ਕਹਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਕਾਮ ਲੈਵਣੋ ਅੰਨ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪੁਗਾਵਣ ਮਾਏ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 98% ਖਾਦਯਾਨ ਵਿਤਰਣ EPOS ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਿਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਓ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਇਹ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਾਏ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲ ਆਖਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੂ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੋ ਤੈਅ ਕੀਨੋ ਹੈ।
1: ਵਨ ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਥੇ ਉਸਕੋ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਥਾ ਉਸਕਾ ਭੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸਸੇ ਹੁਆ ਹੈ। ਤੋ ਰੀਸੈਂਟ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਹੈ CBDC ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬੇਸਡ ਦ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆਫ ਦੀ ਕੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਕਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਹੈ।
0: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू ई साल भी हज यात्रा ने घनी कामयाब बताई है। वे आज नई दिल्ली में आवता साल री हज यात्रा री तैयारियां सारू बुलाई ची मीटिंग पछे खबर नवीसा सा के बातचीत कर रहा हा। रिजिजू बतायो कि ई साल भारत ने हज यात्रा सारू सऊदी अरब रा हज और उमराह मंत्रालय री ओरू दो इनाम दिया गया। वे बतायो कि सरकार आवता साल री हज यात्रा सारू नवी नीति रो ऐलान करेला। केंद्र सरकार चालू माली साल माए गांवाई हलका माए 26,000 किलोमीटर उम्बत्ती लंबी सड़का बनावेला। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलां रा तहत आ सड़का सारू 18,900 करोड़ रुपये उम्बत्ती रकम राखी जी है। ग्रामीण विकास विभाग रा सचिव रोहित कंसल रे सदारत माए भी मीटिंग माए राजस्थान समेत 6 राज्यों रा अहलकार शामिल भया। देश माए सगड़ा तेल शोधन कारखाना माए कच्चा तेल रा पर्याप्त भंडार मौजूद है और एक कारखाना पूरा बूताऊं काम कर रहा है। पश्चिम एशिया रा मौजूदा हालात रा बारा माए आज नई दिल्ली माए भी अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता माए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय रे संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि लाडला 3 दिन माए रसोई गैस री 1,47,00,000 टंकियां ग्राहकां ने देरी जी।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तरीय होड़ा माए तमगा जीतन वाला 50 खिलाड़ियां ने माध्यमिक शिक्षा विभाग माए कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी देवन री मंजूरी दीनी है। ई फैसला नौजवाना ने खेलना रा हलका माए आगे बढ़न और प्रदेश माए खेलना रा विकास ने बढ़ावो मिलेला। राज्य में कृषि उपज मंडी समितियां रो बुनियादी ढांचो मजबूत बनावण सारू मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 18,86,00,000 रुपया रा खर्च वाला विकास रा काम मंजूर कीना है। ये रकम सोजत पलसाना श्रीमाधोपुर बीकानेर नागौर और दुदू कृषि उपज मंडी में विकास रा काम कराया जावेला। इस आगे यार्ड और संपर्क सड़क बनावण और टूटोड़ी सड़क री मरम्मत रा काम ही कराया जावेला। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय माथे आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला राखी जी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन रा तहत कृषि विभाग री ओरू डीडवाना माए राखी जी कार्यशाला माए जलदाय

0: मंत्री कन्हैया लाल चौधरी किसानों खेती री कुल जमीन कमो कम 10% हिस्सा माए प्राकृतिक खेती करण बाबत कहो। नागौर माए भी कार्यशाला माए किसान आयोग रा अध्यक्ष सी आर चौधरी प्राकृतिक और जैविक खेती माथे जोर देता था का कहो का इनु किसाना री आमदनी माए बढ़ोतरी फै सकेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना रा तहत हरियाली बधावन और जमी हेठे पानी रा लेवल माए सुधार सारू जतन करण रा हुकम दीना है। वे आज जयपुर माए अहलकारा सागर मीटिंग रे दौरान बोल रहा है। मुख्य सचिव चालू माली साल री कार्य योजना नई मंजूरी दीनी वे पौधा रोपण और चरागाह विकास से जुड़िया कामा माए स्थानीय और हल्का अनुकूल प्रजातियां माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA विद्यार्थियों ने उजू ली जावन वाली नीट UG 2026 परीक्षा साफ गोई सागर करावन रो भरोसो दिरायो है। एजेंसी रे मुजब परीक्षा माए नकल और गैर कानूनी काम करण री कोशिशा ने करड़ायू रोकी जावेला। NTA उम्मीदवारा ने तैयारी माथे भरोसो राखता थका परीक्षा देवन और जरूरत पड़िया मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 14416 मदद लेवन बाबत कहो है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आज अजमेर माए आयोग रा मुख्यालय माए खबर नवीसा ने लारला एक साल माए आयोग री उपलब्धियां और तकनीकी नवाचारा ने जानकारी दीनी। वे कहो का आयोग परीक्षा प्रणाली री साफ कोई बनाई रखण और परीक्षावां टेम सर करावण सारू खास कोशिशां कीनी है। वे बतायो कि एक साल माए 47,00,000 बत्ता उम्मीदवारा सारू 187 परीक्षावा करार 10,000 उम्मीदवारा री नौकरी री सिफारिश संबंधित महकमा ने करी जी।
1: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 DPC की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस DPC के माध्यम से मिला है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन रा तहत प्रदेश में आए योगाभ्यास रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हूँ पहली आज जयपुर माए मुख्यमंत्री रा रहवास माथे योगाभ्यास कार्यक्रम राखी चियो। इन माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा RAC रा जवाना सागे योग और प्राणायाम रो अभ्यास कीनो। उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवाई जयपुर माए वारा रहवास माथे परिवार वाला और सहायका सागे योगाभ्यास कीनो। वह लोगों योग जुड़बारी अरज कीनी। बैरवा कहो कि योग न केवल एक दिन ताई सीमित रखने री बजाय स्वस्थ जीवन शैली री बुनियाद बनायो जावनो चाहिए। राजस्थान विधानसभा परिसर में आई काल समारोह विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री अगुवाई में योग अभ्यास कार्यक्रम रखियो जावेला। राज्य में फेर रही आंधी बारिश हूँ पारो उतरियो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रे मुजब आवता 24 घंटा माए प्रदेश रा उगनी हल्का माए गरज चमक सागे बारिश रा आसार है जदका आतुनी हल्का माए कठे कठे हल्की बरसात री संभावना है। इन बीच आज दोपहर पाछे चूरू झुंझुनू श्रीगंगानगर भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ जिला माए तेज अंधड़ सागे बारिश हुई। झुंझुनू और नवलगढ़ माए ओला पड़िया। सिख धर्म रा पांचवां गुरु श्री अर्जन देव जी ने आज मारा शहीदी दिवस रे मौके श्रद्धा भाव सागे याद करया जा रहा है। त्याग और सेवा रा प्रतीक गुरु अर्जन देव ने शहीदा रा सरताज ही कहा जावे है। इ मौके गुरुद्वारा माए खास दीवान सजाई चिया और गुरबाणी और शब्द कीर्तन रा कार्यक्रम राखी चिया। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरु सुन ले रहो। PM विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली माए देश माए 200 क्षेत्रीय कार्यक्रम फैला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98% अन्न वितरण EPOS मशीनों करियो जा रियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तर री होड़ा माए तमगा जीतन वाला 50 खिलाड़ियों ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी री मंजूरी दीनी। और RPSC लारला एक साल माए 47,00,000 बत्ता उम्मीदवारा सारू 187

0: बसियूं बत्ती परीक्षाव कराई ऐं साॻे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम की 7 बजे हैं।
2: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वसुधा वाणी।

0: कुटुंबकम।
1: ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा वे लोग सोचते हैं जिनका मन छोटा होता है। जिनका मन बड़ा होता है उनके लिए तो सारा विश्व ही परिवार है।
2: वसुधा वाणी की इस कड़ी में हम जानते हैं हरित ऊर्जा क्या है और कैसे ये हमारे पर्यावरण को सुधार कर सकती है। जानकारी दे रही हैं निधि शर्मा।
3: किसी भी देश के विकास का पैमाना वहाँ की ऊर्जा आवश्यकता से होता है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उद्योगों से लेकर कृषि तक, परिवहन से लेकर घरेलू जीवन तक, हर क्षेत्र ऊर्जा पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है और इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियाँ भी सामने आ रही है। सामान्यतया हम अपनी ऊर्जा की पूर्ति जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे सीमित और पारंपरिक ईंधनों से करते हैं, लेकिन इनके उपयोग से प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रही है। ऐसे में हमें स्वच्छ, सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाले ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना होगा, जिसे हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं। ये वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, नवीकरणीय होती है और जिसके उत्पादन से पर्यावरण को कम से कम नुकसान होता है। इसकी बड़ी विशेषता ये है कि ये अक्षय है, यानी समाप्त नहीं होती और कार्बन उत्सर्जन भी कम से कम होता है। ग्रीन एनर्जी के मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास और हरित हाइड्रोजन है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। देश के अधिकांश हिस्सों में वर्ष भर पर्याप्त सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है, जो सौर ऊर्जा के विकास के लिए आदर्श स्थिति है। पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर योजना, इससे सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिला है। आज खेतों, स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी भवनों में सोलर पैनल का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। छतों पर लगाए जाने वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम आम जन को भी ग्रीन एनर्जी उत्पादन में भागीदार बना रहे हैं। यद्यपि धूप पर निर्भरता, भंडारण और लागत जैसी चुनौतियां हैं, फिर भी तकनीकों और सरकारी नीतियां सोलर ऊर्जा के रूप में हरित ऊर्जा का मुख्य आधार बन सकती है। इसके अलावा पवन ऊर्जा सबसे पुरानी और सफल अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है। समुद्री तटों, ऊंचाई वाले क्षेत्रों, खुले मैदानों जहां पवन वेग 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक हो, वहां तेज हवाओं का उपयोग करके स्वच्छ बिजली उत्पन्न की जा सकती है, जो पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। ग्रीन एनर्जी का एक अन्य उदाहरण भूतापीय ऊर्जा है, जो पृथ्वी के भीतर अत्यधिक ताप दाब के कारण पिघली चट्टानों से प्राप्त की जा सकती है। हालांकि इसके क्षेत्र सीमित है, फिर भी भारत में पूगा घाटी, मणिकरण और तपोवन जैसे स्थानों पर इसकी अच्छी संभावना है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहां बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष और जैविक कचरा उत्पन्न होता है। इसे सीधे जलाने की बजाय गोबर गैस संयंत्र और बायोमास के रूप में उपयोग करके कम प्रदूषणकारी ऊर्जा भी प्राप्त की जा सकती है। ग्रीन एनर्जी की कड़ी में अगला और नवीन कदम ग्रीन हाइड्रोजन है। ये अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन

0: तेजी से बढ़ रहा है। जब सौर या पवन ऊर्जा से प्राप्त बिजली की सहायता से पानी का जल अपघटन किया जाता है और इससे हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। जहां एक ओर कई पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, वहीं ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही सुरक्षित ईंधन है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के बीकानेर में कई व्यावसायिक परियोजनाएं ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर रही है। यद्यपि ग्रीन एनर्जी के सामने मौसम, लागत, भंडारण और कई तकनीकी चुनौतियां हैं, फिर भी वैज्ञानिक प्रगति और सरकारी प्रयासों से हर समस्या का समाधान संभव है। निश्चय ही ग्रीन एनर्जी का व्यापक उपयोग हमारे देश को पर्यावरण अनुकूल वातावरण, सतत विकास और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। हमें चाहिए कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करें। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाली वाहनों की अपेक्षा ई वाहनों को काम में लें। उद्योगों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोयले के स्थान पर अन्य हरित ऊर्जा विकल्पों को प्राथमिकता दें। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: वसुधा वाणी की इस कड़ी में हमने जाना हरित ऊर्जा क्या है और कैसे ये हमारे पर्यावरण को सुधार कर सकती है। जानकारी दे रही थीं निधि शर्मा। आज की वसुधा वाणी में इतना ही। आज्ञा दें, नमस्कार।
2: अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधेव कुटुंबकम।
3: ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा वे लोग सोचते हैं जिनका मन छोटा होता है। जिनका मन बड़ा होता है उनके लिए तो सारा विश्व ही परिवार है।
4: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम वसुधा वाणी।
5: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
6: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सोशल मीडिया को बनाइए अब और भी मजेदार। हमसे जुड़कर साझा कीजिए अपने दिल की बात आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के साथ। आपके दिल में छुपी हो कोई बात, जहन में हो ऐसी कोई याद या हो कोई जज्बात तो आप हमें साझा करें फेसबुक पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के पेज पर। यदि आप इंस्टाग्राम पर साझा करना चाहते हैं तो सर्च करिए AIR चित्तौड़गढ़, या फिर आप हमें सीधे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर जो है 01472240200। बस आपकी ऐसी ही यादों, बातों और जज्बातों को समेटे एक खास कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत। तो साझा करें अपनी बात सीधे आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के साथ और सुनिए प्रत्येक सोमवार शाम 7:30 बजे आपके अपने FM मीरा पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है FM बैंड 102.9 MHz पर। शाम के 7:10 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे केंद्रीय सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में एक विशेष कार्यक्रम हमारी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था, थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
2: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडूंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है।

0: मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इंप्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है, और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति

0: है और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पर लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहाँ पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड व्हेन दे डू दैट दे ऑल्सो रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी।
1: थैंक यू सो मच सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। इंटरव्यूअर इज शिशिर सिन्हा, जर्नलिस्ट।
4: नमस्कार। मोदी गवर्नमेंट इज कंप्लीटिंग 12 इयर्स। ड्यूरिंग दोज 12 इयर्स वी हैव सीन वेरियस अप्स एंड डाउन इन द इंडियन इकॉनमी। We have seen challenges like COVID, we have seen challenges like Russia-Ukraine war, and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those

0: श्रोताओं, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम सब कुछ कमा रहे हैं बस एक सुकून और अच्छी सेहत को छोड़कर, लेकिन फिक्र मत कीजिए क्योंकि आज हमारे खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चाबी की जो आपकी सेहत और मानसिक शांति दोनों के दरवाजे खोल देगी। तो चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाइए और सुनिए कार्यक्रम हेलो फरमाइश। सभी सुनने वालों को आपकी रेडियो दोस्त मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार।
1: हेलो
0: हेलो फरमाइश, कौन साहिबा बात कर रही है, नाम बताएं।
1: अनादी जहां
0: कहां से बात कर रही हैं आप?
1: भोपाल मध्य प्रदेश।
0: भोपाल मध्य प्रदेश में मौसम कैसा है आपके वहां?
1: अभी बारिश हो रही है।
0: बारिश हो रही है तो मौसम काफी ठंडा हो गया होगा।
1: हाँ।
0: अच्छा, तो क्या करती हैं आप?
1: पढ़ाई
0: करती हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: फोर्थ
0: में पढ़ती हैं। बता दीजिए कार्यक्रम में कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें आज?
1: अनाड़ी फिल्म का मौसम है।
0: अच्छा, आपको ये गाना बहुत पसंद है?
1: हाँ।
0: अच्छा, और आपको कॉल लगाने का किसने बताया आज आपको?
1: पापा ने
0: बताया। अच्छा, तो कार्यक्रम में पहली बार कॉल लगाया है आपने?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो हम आपको जरूर सुनवा देंगे आपकी पसंद का गीत। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: क्या

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार।
4: जी नमस्कार।
3: जी नमस्कार, कौन सा बात करे, नाम बता दीजिए।
4: जी मैं दशरथ सेन बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाटाराम से।
3: जी नाटाराम में कैसा मौसम हो रहा है दशरथ जी?
4: जी बढ़िया मौसम हो रहा है, और मौसम की बात कर रहे हैं तो इस वक्त किसान भाई ने अपने अपने खेत पर जो खेत हकाई का काम होता है इस वक्त
3: जी,
4: वो पूरी तरह से कर लिया गया है, बस अब इंद्र राजा से पानी का इंतजार हो रहा है।
3: जी तो अभी मौसम में गर्मी से निजात है या नहीं आपके वहाँ?
4: जी जी बिल्कुल, दिन में थोड़ी सी गर्मी रहती है, यानी 12 से 1 या 2 बजे के तक गर्मी महसूस, उसके बाद ये हवा, ठंडी हवा के झोंके मिल रहे हैं,
3: यानी कि मिला जुला मौसम है।
4: बिल्कुल मिला जुला मौसम, कभी राजस्थान की हवाएं मिल रही हैं।
3: अच्छा।
4: कभी गुजरात तरफ से हवाएं आ रही
3: है। आंधी तूफान का दौर भी जारी है, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है और ओले भी गिर रहे हैं।
4: जी जी
3: जी दशरथ जी, बता दीजिए कार्यक्रम में गीत आज हम कौन सा सुनना पसंद करेंगे?
4: फिल्म का नाम है अंधा कानून, गाने की बोल मौसम का तकाजा है।
3: जी बहुत ही खूबसूरत नगमा है। और दशरथ जी, योग से आप जुड़े हैं क्या?
4: योग हम कम कर पाते हैं योग, क्योंकि समय के अभाव के कारण हम तो वैसे भी किसान लोग किसान की श्रेणी में आते हैं, तो योग तो वैसे भी किसान कर लेता है उसके हिसाब से, लेकिन एक योग अलग ढंग से होना होता है, वो हम कर नहीं पाते हैं।
3: अच्छा जी, अगर आपको कभी योग करने का मौका मिले और अगर आप करना चाहें तो योग की जो पसंदीदा जगह होगी आपकी वो कौन सी होगी?
4: वो खेत पर जाकर।
3: खेत पर जाकर ही? अच्छा, खुले में हवाओं के बीच आप योग करना पसंद करेंगे?
4: हरियाली, एक वहाँ पर ठंडा मौसम, सुहाना मौसम होता है, वहाँ एक चिड़ियों की, कोयल की आवाज मिलती है, उस बीच में अगर योग करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा शांति मिलेगी।
3: अच्छा जी, और योग का समय क्या रहेगा आपका अगर आपने शुरू किया?
4: यही सुबह 7 बजे से।
3: अच्छा, सुबह सुबह योग करना पसंद करेंगे आप, बहुत अच्छी बात है दशरथ जी। आपका पसंद किया हुआ गीत हम आपको जरूर सुनवा देंगे। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत

0: हेलो फरमाइश आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ नमस्कार।
1: शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आरणी दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: शारदा प्रसाद जी, मथुरा में मौसम कैसा है आपके वहाँ? आसपास मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम इस वक्त चिलचिलाती हुई धूप है,
0: बारिश का दौर अभी शुरू नहीं हुआ है वहाँ।
1: पिछले सप्ताह छुटपुट बूंदाबांदी हुई थी आंधियों के साथ में, लेकिन बारिश जो होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई।
0: अच्छा, शारदा प्रसाद जी बता दीजिए कि आप योग करना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल, कहते हैं ना, करें योग रहे निरोग। तो योग एक ऐसा सस्ता और सुंदर सुलभ व्यायाम है जो हमें अवश्य अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और इसके सारी मांसपेशियां हैं, नाड़ियां हैं, स्वस्थ और मजबूत होती हैं और हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहते हैं।
0: शारदा प्रसाद जी, आपका सबसे पसंदीदा योग आसन कौन सा है? अगर आप योग करते
1: मैं
0: हैं
1: तो प्राणायाम करना पसंद करता हूँ, हलासन करता हूँ और चंद्रासन करता हूँ, ये सब मेरे पसंदीदा है, और खाना खाने के बाद वज्रासन बैठता हूँ।
0: अच्छा, और नियमित योग करने से आपकी जिंदगी में क्या बड़ा बदलाव आया है?
1: बदलाव ये कि दीदी मैं स्वस्थ रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ और हमें किसी प्रकार कोई तनाव या अवसाद नहीं होता है और मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, प्रसन्नचित रहता हूँ, जैसे कि किस प्रकार की हमें मानसिक समस्या नहीं होती है।
0: शारदा प्रसाद जी, किसके कहने पर आपने योग शुरू किया था सबसे पहले और कब योग किया आपने सबसे पहले?
1: शुरू में मैं RSS में ज्वाइन किया था शाखा और वहाँ पे जाया करता था और वहाँ से ही हमें प्रेरणा मिली और हमें सूर्य नमस्कार के साथ साथ में अनेकों प्रकार के व्यायाम और योग सिखाए जाते थे।
0: अच्छा, तो किस समय पे करना पसंद करते हैं आप, सुबह या शाम को?
1: जी, मैं सुबह करना पसंद करता हूँ और शाम को मैं थोड़ा सा चहलकदमी करता हूँ, मतलब पैदल चलना करता हूँ।
0: अच्छा, तो योग के लिए पसंदीदा जगह कौन सी है आपकी? घर पे करते हैं या छत पर, पार्क में, कहाँ करना पसंद करते हैं?
1: सबसे ज्यादा तो मैं जो हमारे आसपास फुलवारी है, बाग बगीचे हैं जो कि हमारी कॉलोनी में ही उपलब्ध हैं, वहाँ मैं जाया करता हूँ, वहाँ भी योगासन और कसरत करता हूँ।
0: जी जी, बहुत अच्छा लगा शारदा प्रसाद जी आपसे बात करके। बता दीजिए गीत कौन सा सुनवा दे आज हम आपको?
1: फिल्म का नाम है दलाल, ठहरे हुए पानी में कंकर न मारता हूँ।

0: हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़। नमस्कार।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सा बात करें, नाम बताएं।
1: जी संतोष कुमार रावत मैडम, उमरिया मध्य

0: हेलो फरमाइश आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सा बात करें, नाम बताएं।
1: जी संतोष कुमार रावत मैडम, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी संतोष कुमार जी, उमरिया मध्य प्रदेश में कैसे हैं आप?
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपकी प्रसार सेवाओं का लाभ उठाते हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का प्रसार होता है आकाशवाणी कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ से।
0: अच्छा जी संतोष कुमार जी, मौसम कैसा है आपके वहाँ का?
1: मैम यहाँ पे प्री मानसून की बारिश हो रही है और 18 और 20 से 25 तारीख तक में मानसून हमारे यहाँ पहुँचने वाला है मध्य प्रदेश में।
0: यानी कि गर्मी से थोड़ी राहत है, मिला जुला मौसम है अभी।
1: बिल्कुल, यहाँ पे पेड़ों की संख्या बहुत बड़ी बड़ी तादादों में है ना मैम, पेड़ बड़े बड़े पेड़ यहाँ विराजमान, इसलिए गर्मी का टेम्परेचर यहाँ बहुत कम होता है।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है। संतोष कुमार जी, दिन की शुरुआत कैसे करते हैं आप?
1: बिल्कुल मैम, दिन की शुरुआत हम लोग हमेशा ऊर्जावान शक्ति के साथ करते हैं, क्योंकि जो भक्ति का एक वातावरण होता है वो सुबह का समय होता है। सुबह स्नान ध्यान के साथ अगर दिन की शुरुआत की जाए तो जिंदगी बिल्कुल योग के समान बन पड़ता है। मैडम जी,
0: तो योग करते हैं आप, योग से जुड़े हैं क्या?
1: मैम विश्व योग दिवस भी मनाया जाने वाला है और योग आसन एक ऐसा क्रिया होता है जिसमें हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन बिल्कुल बराबर बना रहता है।
0: तो क्या आप योग करते हैं?
1: बिल्कुल मैम, योग आसन हम लोग करते हैं, सुबह सबसे पहले उठ करके मॉर्निंग वॉक करते हैं और योग का एक अध्ययन साधन होता है योग, और साथ में जो पूजा उपासना का हम लोग ध्यान रखते हैं तो ये भी एक योग का एक अंग होता है।
0: तो आपका सबसे पसंदीदा योगासन कौन सा है?
1: हमारा तो प्राणायाम सबसे पसंदीदा योग होता है मैडम जी, वह का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है योग के लिए।
0: अच्छा जी,
1: तनाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम हमारा रेडियो होता है। जब सुबह पर आप दिन की शुरुआत का संचालन जब होता है, भक्तिमयी रचनाओं का प्रसार होता है, जो भक्ति गीत बजते हैं, इससे हमारा तनाव बहुत कम हो जाता है।
0: और क्या नींद की क्वालिटी जो होती है वो भी बेहतर हो सकती है योग से?
1: बिल्कुल मैम, नींद की क्वालिटी भी बिल्कुल, जो जिन व्यक्तियों को चिड़चिड़ापन होता है तो अगर योग आसन करते हैं तो उनको नींद बराबर मात्रा में मिल सकती है।
0: अच्छा संतोष जी, एक बात बताइए कि ऐसा कोई आसन है जिसे देख करके आपको लगता हो कि ये मुझसे कभी नहीं होगा?
1: ये तो संभव ही नहीं मैडम जी, अगर व्यक्ति चाह ले तो हर योग आसनों को अपनी दिनचर्या में कर सकता है।
0: जी बहुत ही सकारात्मक विचार है आपके। बता दीजिए संतोष कुमार जी, कार्यक्रम में नगमा कौन सा सुनवा दे आज हम आपको?
1: मैडम एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, यकीनी तौर पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के सुनने वाले सभी साथियों को यह गाना बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, और ये गाना है मैडम, फिल्म का नाम है आहूति।
0: जी,
1: नौकरी सौ की हजार की कीमत नहीं होती प्यार की, प्यार अनमोल है ये जो मीठा बोल।

0: चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी। कैसे हैं आप?
0: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। मौसम है गजब को किया है मैडम, सुबह धूप किया, इसके बाद फिर बादल किया, इसके बाद फिर हल्का सा धूप हल्का सा बादल, इसके बाद बादल किया है। इस टाइप का मैडम उलट पुलट मौसम चल रहा है। पानी गिरने के कगार में है, लेकिन तब गिरेगा संभव नहीं है, लेकिन गिरने के कगार में है, गिर सकता है। मानसून जैसे तेज रफ्तार से गति बनेगा तो पानी जबरदस्त गिरेगा।
1: अच्छा, यानी कि मिला जुला मौसम है, खुशनुमा मौसम है।
0: हवा चलता है तो ठीक लगता है, घर में रहो तो बहुत गर्मी लगता है, पंखा कूलर जबरदस्त चलता है
1: जी। ऐसे मौसम में आपको अपना और अपने परिवार वालों का सभी का ख्याल रखना है। इंद्रभान जी क्या करते हैं आप?
0: मैं इसी सेल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कॉर्पोरेशन में नौकरी करता हूँ, सर्विस करता हूँ।
1: और इंद्रभान जी, दिन की शुरुआत जो है वो किस तरह से होती है आपकी?
0: सुबह तो मैडम क्या होता है, सुबह मैं 4 बजे भोर को उठता हूँ, उसके बाद फिर उठने के बाद घर का काम करता हूँ और टिफिन पूरा भरता हूँ। उसके बाद टिफिन पानी की बोतल भरने के बाद में ड्यूटी की तैयारी करता हूँ, कचरा वचरा फेंकता हूँ, बाहर जाता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता धोता हूँ, तैयार होता हूँ और सुबह 6 बजे ड्यूटी जाता हूँ।
1: तो योग से जुड़े हैं आप, योग का समय निकालते हैं सुबह सुबह या शाम को?
0: जी मैडम, योग का समय निकालता हूँ और खूब पैदल चलता हूँ मैडम, और मैं 2-3 किलोमीटर तक पैदल चलता हूँ, 1 किलोमीटर भी पैदल चल जाता हूँ, लेकिन पैदल चलते रहता हूँ मैडम। तो योग भी होते रहता है, व्यायाम भी होते रहता है।
1: अच्छा जी, तो इंद्रभान जी नियमित पैदल चलते हैं, तो इससे जिंदगी में आपकी क्या बड़ा बदलाव आपको नजर आ रहा है?
0: इसमें ये बदलाव होता है मैडम कि जैसे आपको कोई भी शुगर की बीमारी, प्रेशर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी और कई प्रकार के जो नाना प्रकार की बीमारी ये जो होता है आपका शरीर में वो नहीं होगा मैडम।
1: अच्छा जी।
0: क्योंकि इससे कंट्रोल होता है, सेहत भी अच्छा होता है, मेंटेनेंस भी होता है और खान पान भी आपका रहने से आपका शरीर में स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव है।
1: इंद्रभान जी, जब कभी ऐसा होता है कि योग करने का, व्यायाम करने का हमारा मन नहीं होता, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे प्रेरित करते हैं कि हमें योग करना ही है?
0: जैसे मैडम क्या है, जैसे कि वो मालिक नहीं करने का तो वही चलते रहते हैं थोड़ा सा ये योग्य हो जाता है हमारा।
1: अच्छा जी।
0: इससे चलते रहते हैं, हाथ पाव इधर उधर हिलाते हैं तो योग के बराबर हो जाता है
1: जी। इंद्रभान जी बता दीजिए, कार्यक्रम में नगमा आज हम आपको कौन सा सुनवा दें?
0: आज मेरे को सुनाएंगे मैडम, पुराना पिक्चर है ना बरसात, तो गीत के बोले जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है।

श्रोताओं, समय अभाव के चलते जिन श्रोताओं की टेलीफोन कॉल्स हम चाहते हुए भी आज के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए, उनके नाम हम आप तक जरूर पहुंचा देते हैं। आप हैं उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया, गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल जी, बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापत जी, कारुंडा छोटी सादड़ी से रतनलाल जी सुथार, सागवाड़िया से आज़ाद मोहम्मद जी, सावा से बसंतीलाल सैन जी, भिलवाड़ा से राजूलाल मेहर जी, महाराष्ट्र से तुकाराम जाधव जी और मानसा से जगदीश गर्ग जी। तो आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं बस इतना ही। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त मीनाक्षी को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: भूली हुई यादें इस प्रोग्राम में सुनिए गुजरे हुए जमाने की फिल्मों पर बातें, उन फिल्मों के गाने, उन फिल्मों में अभिनय करने वाले कलाकारों के बारे में, संगीतकारों के बारे में, गीतकारों के बारे में। प्रोग्राम भूली हुई यादें हर मंगलवार सुबह 10:05 पर 102.9 FM मीरा चैनल आकाशवाणी के तोड़गढ़ पर। प्रोग्राम भूली हुई यादें।

ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों और बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाइयों और बहनों ने मारी रुक्मणी की ओरू गणो गणो राम राम सा।
4: ओ रुक्मणी बहन के लाल लारे मारू रामू भाई की ओरू भी किसान भाइयों और बहनों ने घना घना राम राम सा।
3: राम राम रामू भाई राम राम
4: राम राम सा। रुक्मणी बहन देखो सा घना दिनों मिलिया हो।
3: हाँ सा देखो और अब आप ही टाइम पे हाजिर भी वेगे हाँ कार्यक्रम लेन। कार्यक्रम में नरी सारी जानकारी बातचीत और मनोरंजन भी करावांगा और साथे साथे मौसम की जानकारी भी देवांगा।
4: बिल्कुल सा मौसम की बातचीत की थी। और रुक्मणी बहन तो देखो सा जून महीनों चल रहा है और ये टाइम गर्मी

0: वासा किसान भैया बढ़िया सो लोकगीत आप उन्हों है
1: बिल्कुल
0: मात
1: सा
0: मात पिता की सेवा धनराज सोनी जोधपुरिया की आवाज में
1: बिल्कुल सा। और किसान भाया और बिना देखो हमेशा माँ आपके वास्ते अच्छी न अच्छी जानकारी कार्यक्रम में लेन हाजिर वहाँ। आज आपके वास्ते एक अच्छी जानकारी लेन हाजिर यहाँ सा कि खेत बचाओ अभियान, कृषकों से बातचीत, ग्राम सुवावा, कृषक अनुभव, पीएम किसान सम्मान निधि का सही उपयोग, 23वीं किस्त। तो इसी बारे में आपने जानकारी ले लिया है सीताराम जी मावर साहब, तो मिले बैठ सुना भैया सो किसी जानकारी।
0: हाँ सर।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
5: राम राम। आज खेत बचाओ अभियान का कैंप लगा है ग्राम सुहावा में और इस समय गांव के कुछ किसान भाई हमारे साथ हैं। आपका नाम?
6: गोटूलाल।
5: गोटूलाल जी गांव कौन सा है आपका?
6: सुहावा।
5: आपका नाम?
6: नंदलाल।
5: आपका गांव भी सुहावा?
6: सुहावा।
5: आपका नाम?
7: जयराज जी धाकड़।
5: सुहावा।
7: राधेश्याम धाकड़ सुहावा।
5: आज हमारे किसान भाइयों के लिए हम आपसे बात करेंगे। सभी को किसान भाइयों की ओर से राम राम।
7: राम राम।
5: गोटूलाल जी सबसे पहले आप ही बताएं किस तरह का काम आप करते हैं खेती बाड़ी का?
6: मक्की मूंगफली इस बार।
5: सबसे बढ़िया फसल कौन सी होती है आपके यहाँ खरीफ में?
6: मूंगफली।
5: और इस समय तैयारी आपने कर ली?
6: हाँ।
5: जैसे कोई फसल लेते हैं उससे पहले खाद की, बीज की, मिट्टी की जांच हम करवाते हैं, पता रहता है कौन सी किस्म बोनी है?
6: नहीं।
5: और बीज कहाँ से लाते हो फिर?
6: बीज तो दुकान बुलाओ।
5: अच्छा, जो दुकान वाले कहते हैं वही आप बुआई कर देते हैं।
6: हाँ।
5: नंदलाल जी आप किस तरह से फसल का चुनाव कर

0: करते हैं?
1: पिछले दुकान पर मक्की मोबाइल लेन मक्की मोबाइल तो घर ही रहा है।
0: अच्छा,
1: और मक्की थैली लिया वहाँ पे एक डी ए पी साथ में बोधा सोयाबीन बहुत कम निकले कम वहाँ।
0: सबसे बढ़िया गाँव सुहाओ में मूँगफली होती है,
1: मूँगफली मक्की दोनों।
0: जयराज जी, आप कौन सी फसल लेते हैं?
2: मक्का और मूँगफली, ये खरीफ सीजन में तब।
0: और रबी में?
2: रबी में यही है, गेहूँ चना सरसों।
0: राधेश्याम जी, आप कौन सी फसलें लेते हैं?
3: यह बारिश में या
0: खरीफ में? अभी जो मौसम आने वाला
3: मक्का
0: है,
3: मूंगफली।
0: मक्का मूंगफली।
3: हाँ,
0: और रबी में
3: गेहूँ चना सरसों।
0: सबसे बढ़िया फसल कौन सी होती है आपके यहाँ,
3: इस मौसम में या उस मौसम में?
0: दोनों मौसम में।
3: ये तो सरसों चना गेहूँ, और इस मौसम मक्का मूंगफली दोनों।
0: कहते हैं कि एक ही तरह की फसल बार बार लेने से परेशानी खेत में आ जाती है।
3: हाँ सर,
0: क्या होता है?
3: वो उपजाऊ घट जाती है।
2: अच्छा। पैदावार कम बढ़ जाती है।
0: कैसे?
3: क्योंकि बार बार फसल बनने से उनका खेत का वो रस चोंच लेती फसल।
0: अच्छा, तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपके पास है। फिर आप फसलें बदल बदल कर बोते हैं?
3: हाँ सर।
0: जयराज जी, कभी आपने मिट्टी की जांच करवाई जिससे मालूम पड़ता है कि हमारी फसल में डीएपी कितनी मात्रा में डालना है, यूरिया कितनी मात्रा में डालना है?
2: नहीं सर, जांचें वगैरह नहीं करवाई, वो अंदाज से ही डालते हैं हमसे एसएसपी और डीएपी यूरिया
0: अंदाज से।
2: फसल लाग जाओ फसल ने कभी या की जरूरत है तो अनुसार डाल।
0: कहीं से सलाह तो लेते होंगे ना कि परेशानी आ रही है खेती बाड़ी में?
2: थोड़ा जनरल नॉलेज तो वैसे ही रहता ही है सर, ऐसे मीटिंग करते ही रहवा जो पता रहे।
0: अच्छा, इस तरह की मीटिंग कैंप में जानकारी मिल जाती है आपको?
2: हाँ सर, मिलती है।
0: अच्छा, राधेश्याम जी, किसान भाइयों का जीवन अच्छा हो सके क्या करना चाहिए उन्हें?
3: उनको टेक्निक से खेती करना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए उनको, किसान को।
0: यदि ये जानकारी आपको मिले और टेक्निक की सूचना उस तक पहुंचे, बदलाव आ सकता है?
3: हाँ सर, आ सकता ना।
0: आप गांव के युवा किसान हैं, जींस आपने पहन रखी है, बॉडी भी अच्छी है, आप किस तरह से तरीका अपनाते हैं, नवीनतम तकनीक को काम में लेते हैं ताकि पैदावार अच्छी हो सके?
3: सर, तकनीक से तो नहीं है सर, सभी खेती करते उसी हिसाब से हम भी करते हैं,
0: पारंपरिक तरीके।
3: हाँ, पारंपरिक तरीके से।
0: पहल कौन करेगा कि नवीनतम जो तकनीक है खेती करने की, चाहे फसल हम सोयाबीन की लें, मक्का की लें, या रबी में गेहूँ लें, सरसों लें, चना लें?
3: ये किसान है, पहल तो किसान को करनी पड़ेगी।
0: और आगे युवा आ सकता है क्या?
3: हाँ सर, आ सकता ना किसान, युवा किसान।
0: इस समय किसान भाइयों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना होता है? जयराज जी, आप बताएं।
2: सर, इसमें लागत से अधिक मुनाफा कम मिल रहा है, मार्केट की समस्या है, मंडी दूर पड़ती है और इसमें लागत ज़्यादा आती है और खेती में बचत कम होती है।
0: जितनी मेहनत हमारा किसान भाई करता है उतना परिणाम नहीं मिल पा रहा?
2: नहीं मिल पाता सर।
0: तो कारण क्या रहता है इसका?
2: सर, ज़्यादा बारिश की वजह से या कोई रोग प्रकोप कीट, या अभी मक्का में इल्ली की बहुत समस्या आ रही है।
0: जो साथी होते हैं कृषि पर्यवेक्षक होते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि कौन सी फसल हमें लेनी है और कितनी मात्रा में यूरिया डीएपी हमें डालना है। बीजोपचार कभी करते हैं आप?
2: बीजोपचार कभी किया है सर।
0: क्या फ़ायदा होता है?
2: अंकुरण में अच्छा है, फसल बढ़िया है, अंकुरण हो जाती है।
0: बीजोपचार करते हैं तो कीड़े और बीमारियों का प्रकोप नहीं होता?
2: कम होता है, कम होता है, फसल बढ़िया ग्रोथ में रहती है।
0: अच्छी, आप करेंगे इस बार?
2: हाँ सर, करें, पर भी उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है सर,
0: लागत बढ़ जाती है।
2: लागत बढ़ जाती है।
0: और जो तरीका, यदि बीजोपचार नहीं करेंगे तो फिर कीड़े और बीमारियां वैसे नुकसान कर देगी?
2: हाँ, करती है सर। वो या तो फास्ट में पैसे लगाओ या बाद में लगाओ, पैसे लगाने पड़ते हैं।
0: पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। नंदलाल जी, आपका तरीका कैसा रहता है खेती करने का, हमें बुआई से लेकर कटाई तक बताओ। जैसे इस बार आप क्या लेंगे?
1: मूंगफली मक्की,
0: मूंगफली
1: सोयाबीन भी बाएंगे।
0: अच्छा, मूंगफली किस तरह से लोगे, किस समय बुआई करोगे?
1: कर दिए बार बुआई मूंगफली।

0: बा आ गई थी,
1: कम्प्लीट बही थी।
0: और
1: सोयाबीन बार बढ़ने की मूंगफली बही थी।
0: बीज कहाँ से लाए थे?
1: दुकान से।
0: और कितने बीघा में आपने ली है मूंगफली?
1: 5 बीघा में की, 6 बीघा मूंगफली।
0: कैसी होती है पैदावार इसकी?
1: ठीक ठीक है जब बढ़िया।
0: जैसे
1: बारिश का उपयोग गड़ जा तो कम, निकले तो निकल जा।
0: तो सिंचाई का कोई साधन है या नहीं आपके पास?
1: वो है, मोटर है।
0: पर्याप्त पानी की व्यवस्था है उसमें?
1: फूल भी नहीं कम है।
0: अच्छा, परेशानियाँ क्या क्या आती है आपको?
1: इल्ली खा जाओ मक्की में और मूंगफली में जड़ गड़ के रोग आ जाता है, जड़ काली पड़ के रोग उखल जाता।
0: अच्छा, तो ये परेशानियाँ आती है, जड़ गलन की परेशानी आती है, इल्ली लग जाती है। दवा का चुनाव कैसे करते हो? कौन बताता है कि ये दवा डालने से बीमारी?
1: फोन में भी देख लो, दुकान में जाऊँगा जो मोरा पे बांधी टंकी छटिया करा करा
0: मोरा पे बांधा
1: टंकी बांध मोरा पे छटिया करा।
0: अच्छा, इससे
1: 3 दिन बाद तो भी छाड़नी पड़ेगी मिल्ली की।
0: इल्ली मर जाती है?
1: हाँ, मर जा, 15 दिन में बाजी पड़ जा।
0: अच्छा, फिर दोबारा
2: 3-4 बार स्प्रे
0: करना। खेत बचाओ अभियान आपके यहाँ गांव में लगा है, कोई मन में सवाल आता है कि मुझे ये जानकारी लेनी है?
1: सवाल देखिए, DAP यूरिया ज्यादा छाट रही है जो एक बार जयपुर की होगा जहाँ जब।
0: अच्छा,
1: जयपुर खंदा हो।
0: अच्छा, मिट्टी की जाँच आप करवाते हो या नहीं?
1: जयपुर की होगा एक बार जहाँ जब।
0: मिट्टी की जाँच तो यही हो जाती है चित्तौड़गढ़ में?
1: ये तो मेरे को पता नहीं, मैं इतना गारा पे करके मिट्टी और भविष्यवाणी करना कोई बोले जो इतना गारा 5-7 जनों का जयपुर गया।
0: गोटूलाल जी, आप बताएं कि यदि किसान भाइयों को आगे बढ़ना हो क्या करना पड़ेगा उन्हें?
3: ये चाहिए खाद बीज कम रेट में मिला दवाया ने दिया आगे बढ़ने।
0: जो मूल्य सरकार ने निर्धारित किए हुए हैं उसी मूल्य पर किसान भाई को उर्वरक है, बीज है, दवाई है
3: मिलना चाहिए।
0: हाँ। गोटूलाल जी, नंदलाल जी, जयराज जी और राधेश्याम जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। हमारे साथियों की ओर से आभार, धन्यवाद। राम राम।
4: वासा किसान भैया, खेत बचाओ अभियान पे कृषका का अनुभव आप ही हुआ है सा?
5: बहुत आशा। और अब चला हाँ कार्यक्रम में है चोकोसो लोकगीत हुलना।

0: वैसा किसान भैया चोखो सो लोकगीत आप हुनियो है चांद चढ़ियो गिगनार सीमा मिश्रा और साथिया की आवाज में।
1: बिल्कुल सर। और किसान भाई देखो एक जानकारी आप वास्ते बोले ना हाजिर भी यहाँ की टाइकोडर्मा को उपयोग अपना किसान भाई किसान कर सके। देखो सर किसान भाई टाइकोडर्मा एक लाभकारी फफूंद मित्र कवक के वहाँ जिनको उपयोग जैविक खेती बागवानी फसला की सुरक्षा और विकास के लिए आप लोग कर सका।
0: टाइकोडर्मा यो मिट्टी में पनपवा वाली हानिकारक बीमारियों रोके है, जड़ा को विकास करे है और पैदावार ने भी बढ़ावे है। टाइकोडर्मा जड़ और उकटा और डैम्पिंग ऑफ मिट्टी जनित बीमारियां ने पैदा करवा हानिकारिक फफूंद ने भी नष्ट करे ऐसा।
1: बिल्कुल सर। और कुणी बहन और पौधों को जो विकास है पौधों की जो जड़ा है ऐसा वगैरह तक जाओ में भी मदद करे है। टाइकोडर्मा का उपयोग अपने मादा जनित कवक रोगों को प्रभावी नियंत्रण क्यों जा सके है।
0: टाइकोडर्मा के उपयोग किसी भी प्रकार की हानिकारक प्रभाव नहीं वे है, पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं वे है और टाइकोडर्मा संवर्ध के उपयोग पोषक तत्व की उपलब्धता भी बढ़ जावे ऐसा।
1: बिल्कुल सर। रुकमणी बहन और जिलों का ये कि जो पौधों को जो उचित विकास है वो भी देखो सर की बढ़ते जावे, अधिक उत्पादन वे है। टाइकोडर्मा की बुवाई पहली बीजों को टाइकोडर्मा से उपचारित करना और अंकुरण दर बढ़ाना बहुत ही जरूरी है।
0: यह मिट्टी में मौजूद फास्फोरस और पोटाश जैसा पोषक तत्व ने गोल्ड पौधा के लिए उपलब्ध करावे ऐसा और वायुमंडलीय नत्रजन करवा के लिए वन में जीवाणु और राइजोबियम एजेक्टोबैक्टर और
1: हाँ बिल्कुल सा। और ये टाइकोडर्मा का उपयोग अपन लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर फास्फेट विलयक जीवाणु आधारित तो कल्चर को साथ भी उपचार कर सके लिए बहुत ही फायदे रहे। तो किसान भाई आपने भी टाइकोडर्मा का उपयोग करना है अपनी खेती में ताकि अपनी जो फसल है वे भी सुरक्षित रहे, जो भी बीमारियाँ है वे परंपरा नहीं देवे है।
0: और अबे देखो निमाड़ा मंडी की बात करा तो गेहूं का भाव है 2460 रुपया लेन 2821 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का बिली का भाव है 1500 लेन 2080 रुपया प्रति क्विंटल। आसानी जो का भाव है 2200 लेन 2501 रुपया प्रति क्विंटल।
1: बिल्कुल सा। और आज का सरसों का भाव की बात करा आज निमाड़ा मंडी में सरसों का भाव रहा है 5880 रुपया प्रति क्विंटल लेन 7340 रुपया प्रति क्विंटल। सोयाबीन का भाव रहा है 5200 रुपया प्रति क्विंटल लेन

0: 6,800 रुपया प्रति क्विंटल। और लहसुन की बात करें किसान भाई, आज निम्बाड़ा मंडी में लहसुन को भाव रहा है 5,000 रुपया प्रति क्विंटल, लेन 18,000 रुपया प्रति क्विंटल।
1: और असानी मूंग की बात करा तो मूंग का भाव है 5,540 लेन 6,927 रुपया प्रति क्विंटल। धनिया का भाव है 12,400 लेन 13,000 रुपया प्रति क्विंटल। तिल्ली का है 8,501 लेन 11,101 रुपये प्रति क्विंटल। असानी उड़द का भाव है 5,515 लेन 8,301 रुपये प्रति क्विंटल।
0: बिल्कुल सर, ये तो रहा आपने काले कृषि उपज मंडी निम्बाड़ा का भाव। और जाता जाता अपने किसान भाई ने आज के मौसम की जानकारी भी आप लोग दे दें सा।
1: तो आज को अधिकतम तापमान रियो है 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान है 28 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता है 45% और हवा की रफ्तार है 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब। और बादल गरजवा के साथ साथ बिजली भी चमकवा की संभावना है और बारिश भी वैसे के हिसाब।
0: बिल्कुल सर, और काले का मौसम की जानकारी भी आपने किसान भाई दे दूं। काले अधिकतम तापमान रही किसान भाई 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही काले तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। और आर्द्रता की बात करें किसान भाई, तो काले आर्द्रता रही 37% और हवारी गति रही 14 किलोमीटर प्रति घंटा। काले भी मौसम बादल छाया रहेगा और हल्की हल्की बारिश होगा की भी संभावना है।
1: और देखो संभावना तो अपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा की भी नहीं है, टेम वेरियो है अपने कार्यक्रम को पूरो। तो देव माने दया ने झजत मणि दया की ओर गणा गणा
0: राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रही थी किसान भाइयों और बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके तुरंत पश्चात रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में, जिन्हें हमारी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। बस कुछ पल इंतजार कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों

0: का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at VivaTech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे हैं तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म से ये गाना। सलीम बिजनौरी के बोल, डब्बू मलिक का संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान।

दान सिंह का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत दान सिंह के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। दान सिंह खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि दान सिंह की प्रतिभा

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दानसिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था वो फ्लैट में डांसिंग के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। डांसिंग ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964 मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही है।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल न जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारेलाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी, और सेक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माई लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी याद।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 8:52 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: पर शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: अभी तक आप सुन रही थी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 8:52 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।